मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के

श्रावण मास की पांचवी तिथि तदनुसार 27 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेनू भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये निजी बात केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भोलेनाथ केवल देव नहीं बल्कि विश्वास का वो दीप है जो हर अंधकार में राह दिखाते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और कंठ में विष है। वही हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और करुणा से स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है।

हर धड़कन में बस एक ही नाम रहे, लबों पर सदा या रसूलुल्लाह का पैगाम रहे। अपनी सीरत से रोशन है जहाँ का हर सफ़र, आपकी सीरत से रोशन है जहाँ का हर सफ़र, आपकी मोहब्बत ही इमाम की पहचान रहे।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये खूबसूरत नात। आइए अब महादेव की भक्ति से सराबोर एक और भगवान शिव का भजन सुनते हैं, क्योंकि महादेव का नाम लेते ही मन को एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। वो आशुतोष हैं, भाव से की गई छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार कर लेते हैं। जो हर हर महादेव का जय घोष करता है, उसके मन से भय और निराशा स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्रीराम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्रीराम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्रीराम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग हमारे श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दिन के 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय मनीषा की इस चिंतन धारा में सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, न केवल समस्त धरती पर रहने वाले मनुष्य ही समाये हुए हैं, न केवल प्राणी मात्र अपितु समस्त सृष्टि जिसमें पशु पक्षियों के साथ ही साथ जल और समस्त हरितिमा को सजाने वाले पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं, ये वासुदेव कुटुंबकम का प्रत्यक्ष श्रेष्ठ उद्घोष है। इस सारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी एक कुटुंब के समान ही नहीं है, बल्कि सारी मानव जाति एक कुटुंब ही है। एक व्यक्ति का दुख सबका दुख है, और धरती के एक छोर पर रहने वाले एक व्यक्ति का सुख धरती के दूसरे छोर पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति के सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है। भूमंडलीकरण और संचार सुविधाओं ने जिस सत्य को आज हमारे सामने इतने करीब ला दिया है, उस सत्य को सृष्टि को रचने वाले ने सबसे पहले ही स्थापित कर रखा है। ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सागर, ये नदियां, ये पहाड़, ये जंगल, ये निरंतर अपने अनुशासन में बदलता मौसम का चक्र, पूरे संसार में एक सी व्यवस्था चल रही है और सह अस्तित्व में ये सारा संसार गुंथा हुआ है। हिमालय की बर्फ पिघलती है या हिमालय के पहाड़ों के जंगल कटते हैं तो बलशाली अमेरिका भी चिंतित होता है। बूंद जब बादल से धरती की ओर गिरती है, जब नदी सागर से मिलने दौड़ पड़ती है, उसमें वासुदेव कुटुंबकम की गूंज सुनाई देती है। वृक्ष पर जब फूल खिलता है या फल पकता है तो उसमें भी वासुदेव कुटुंबकम की सुगंध और मिठास फैल जाती है। संसार के समस्त मनुष्यों ने, युग प्रवर्तकों ने, धर्मों ने, मजहबों ने इसी भावना का प्रतिपादन किया है। सारी मानव जाति एक कुटुंब के समान है। सभी प्राणियों में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ताकि इस पृथ्वी पर मानव जाति बनी रहे और अपने सर्वोच्च को प्राप्त कर सके। मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने अब तक जितना विकास किया है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना ही मूल तत्व के रूप में विद्यमान रही है। किंतु यह भी सत्य है, मनुष्य में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां साथ साथ रहती हैं, और इन आसुरी प्रवृत्तियों ने मानव जाति का कोई कल्याण नहीं किया है। युद्ध और नरसंहारक शस्त्रों की होड़ ने समस्त मानव जाति को भयग्रस्त कर रखा है। इसी भय से मुक्त होने और शांति के साथ मानव कल्याण को दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का सृजन किया गया। हम भारतीयों ने वासुदेव के विराट स्वरूप की कल्पना करके जिस तरह सारी मानव जाति सहित समस्त सृष्टि को एक कुटुंब माना है, उसी को वेदों की ऋचाओं में इस तरह प्रतिष्ठित किया गया है। हम सबकी कल्पना एक हो, हृदय एक हो, मन समान हो, जिससे उपजे सुंदर सम्मति, सह अस्तित्व भावना सब में गतिमान हो। यही वो भावना है जो सुनामी की लहरों के आतंक को दूर करने के लिए सारी दुनिया एक कुटुंब की तरह बन गई और एक दूसरे की सहायता की। सारी मानव जाति का कल्याण हो। ओम शांत।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर। श्रोताओं, सवेरे के 6:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं काव्यधारा, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रमोद कुमार का काव्य पाठ।

0: और एक गजल के कुछ और शेर। यार खुद को संभालते रहना, चाहे पत्थर उबालते रहना, आज दस्तूर है ये दुनिया का, सबको धोखे में डालते रहना, सबको ये लोग ही सिखाते हैं, तू भी मतलब निकालते रहना, इतना आशा कहाँ किसी के लिए, सारी बातों को टालते रहना, घोर संकट या गुप अंधेरा हो, घोर संकट या घुप अंधेरा हो, दिया मुश्किल है बालते रहना, यार खुद को संभालते रहना, चाहे पत्थर उबालते रहना। जितने पौधे उगेंगे अच्छा है, जितने पौधे उगेंगे अच्छा है, मन से बीजों को डालते रहना, यार खुद को संभालते रहना। आईनों की तरफ है हर पत्थर, प्रेम सच को संभालते रहना, यार खुद को संभालते रहना, चाहे पत्थर उबालते रहना।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे काव्यधारा। श्रोताओं, काव्यधारा के अंतर्गत आज आपने सुने प्रमोद कुमार शर्मा का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, और रात्रि 10 सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुगम संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे अनीता शर्मा के स्वर में भजन। समय रहेगा संध्या 7:32 पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: पुनीता त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नंदन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमित लाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदर्शयति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
3: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
2: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्री जोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
4: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
2: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्त राष्ट्र संघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
6: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
5: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संदिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर चौथा राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। श्री शाह ने कहा, ये शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे यकृत के विकार और निदान पर पुनः प्रसारित जानकारी।
2: शरीर में पाचन क्रिया और पाचन संस्थान की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले अंग है यकृत और पीलिया। लीवर पेट के दाहिने भाग में और पीलिया हृदय के नीचे शरीर के बाएं भाग में स्थित होता है। उधर में रंजक लाल कणों और पाचक पित्त पैदा करना यकृत का काम है। यकृत ठीक काम करता है तो रंजक पित्त सही ढंग से सही मात्रा में पैदा होकर समुचित मात्रा में रक्त का निर्माण करता है, जिससे शरीर स्वस्थ तथा शक्तिशाली बना रहता है। ऐसा न होने पर शरीर में रक्त अल्पता और पीलिया जैसी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। शराब पीना यकृत का सत्यानाश करने का प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में लगातार अधिक समय तक अधिक गर्म और गरिष्ठ यानी भारी पदार्थ चिकने पदार्थ का अति सेवन करना दूसरा कारण होता है। शेष कारण मल मूत्र के वेग को रोकने की आदत, रात में देर तक जागना और सुबह सूर्योदय के बाद देर तक सोना, दिन में सोना, अत्यधिक मैथुन करना, अत्यधिक परिश्रम करना, चोट लगना, मलेरिया, पांडु रोग या टीबी का होना, इनमें से कोई भी एक कारण इसी में विकार होने का कारण बन सकता है। यकृत की दुर्बल स्थिति में मल विसर्जन ठीक से न होना यानी कब्ज होना, पेशाब गंदा व पीला होना, मुंह सूखना और प्यास लगना, शरीर की त्वचा का मैला होना, सुबह मुंह कड़वा रहना, जष्ठाग्री मंद होना, जीभ मैल की परत रहना, जी मिचलाना व उल्टी जैसा जी करना, शारीरिक थकावट होना, शरीर निर्बल हो जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यकृत पर जाने से छाती की दाहिनी ओर कंधे व पैरों की हड्डियों में दर्द होने लगता है। मन में बेचैनी और सुस्ती होना, आंखों के नीचे काले घेरे पैदा हो जाना, अनिद्रा रोग, दहा, शोथ और जलन होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस स्थिति में बाएं करवट लेटने से आराम मालूम देता है। ऐसे लक्षण देखकर समझ लेना चाहिए कि अपना यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा है। यदि यकृत में कोई छोटा मोटा विकार हो और रोग प्रारंभिक अवस्था में हो तो उचित परहेज यानी पथ्य अपथ्य का पालन करते हुए घरेलू इलाज करके रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती। यदि घरेलू इलाज से शीघ्र ही विकार नष्ट न हो तो फिर कुशल चिकित्सक से चिकित्सा कराने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रहे कि इलाज घरेलू हो या चिकित्सक द्वारा कराया जाए, परहेज का सख्ती से पालन करना दोनों ही स्थितियों में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस रोग में चिकित्सा से ज्यादा लाभ परहेज का पालन करने से होता है। यकृत विकार दूर करने वाले कुछ वही नुस्खे इस प्रकार से हैं। हरड़ व रहोय की छाल 10-10 ग्राम लें और मोटा मोटा कूट कर एक गिलास पानी में डालकर उबालें। 1/4 अंश पानी बचे तक उतार कर छान लें। इसमें यह छाल 200 मिलीग्राम और पीपल चूर्ण 0.5 ग्राम डालकर पीने से बड़ा हुआ लीवर ठीक हो जाता है। पीपल, काले मिर्च, अम्लवेत और सेंधा नमक चारों बराबर वजन में लेकर कोट पीसकर महीन चूर्ण करके मिला लें और शीशी में भरकर रख लें। इस चूर्ण को सुबह खाली पेट 0.5 चम्मच मात्रा में सहजना के काढ़े के साथ लेने से यकृत विकार नष्ट होते हैं। इनमें से किसी भी एक नुस्खे का सेवन लाभ न होने तक धैर्य पूर्वक करना चाहिए और पथ्य का सेवन तथा अपथ्य का त्याग करने में लापरवाही नहीं करना चाहिए। हल्का सादा ताजा आहार मौसमी फल और हरी साग सब्जी व दूध छाछ का सेवन पथ्य है। घोर परिश्रम गरिष्ठ पदार्थ तले हुए और चिकना युक्त पदार्थ मिठाइयाँ और घी तेल का सेवन अपथ्य है। इस प्रकार से आप अपने यकृत के विकार को दूर कर सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आपने सुनी जानकारी यकृत के विकार और निदान विषय पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें, जिसके अंतर्गत आज जानकारी का विषय है मूंगफली की उन्नत खेती।
3: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों खेती बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं मूंगफली की उन्नत खेती के संबंध में। किसान भाइयों हम सभी जानते हैं कि मूंगफली बहुत ही प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। किसान भाइयों इसके दानों में लगभग 45 से 50 प्रतिशत तक तेल, 25 से 30 प्रतिशत प्रोटीन होता है। उन्नत तकनीकों को अपनाकर किसान भाई मूंगफली की अच्छी उपज और अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों बात करें यदि उन्नत खेती में सबसे पहले जलवायु के और भूमि के संबंध में कि भाई किस तरह की जलवायु में और किस तरह की मिट्टी में हमारी मूंगफली की फसल का अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है। तो भाई मूंगफली की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। ये फसल अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार हमारे किसान भाइयों को देती है। किसान भाइयों अब बात करें फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी उन्नत किस्मों की, तो उन्नत किस्मों को हम क्षेत्र के अनुसार बांटते हैं। तो भाई हम जो है हमारा जिस तरह का क्षेत्र है, जिस तरह की जलवायु है, उसी हिसाब से हमें जो है भैया प्रजातियों का चयन करना चाहिए। हम कुछ उन्नत प्रजातियां आपको बता रहे हैं। तो भाई GG20, TG37A, GG2, गिरनार 2, ICGV आदि स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित किस्में अधिक उपयुक्त रहती हैं। किसान भाइयों बात करें भूमि की तैयारी की, तो भाई हम खेत में 2-3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें और अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें अपने खेत समान रूप से। बुआई के समय की यदि हम बात करें तो भाई खरीफ का जैसा कि मौसम चल रहा है तो खरीफ में जून जुलाई बीज की मात्रा सामान्यतया 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। किसान भाइयों मूंगफली की बुआई हमें कतार में करनी चाहिए और कतार से कतार की दूरी लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। बुआई से पहले बीज उपचार हमें सावधानी पूर्वक जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों अब बात करते हैं किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उर्वरक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तुम्हारे किसान भाई उर्वरकों का प्रबंधन अपनी फसल में किस प्रकार करें ताकि उनको अच्छा उत्पादन अपने मूंगफली की फसल से हो। किसान भाइयों हो सके तो मिट्टी की जांच हमें करा लेनी चाहिए, उसी के आधार पर हमें उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। यदि किसी वजह से मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तो सामान्यतया 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, आवश्यकता अनुसार पोटास प्रति हेक्टेयर दें। फूल आने के समय जिप्सम का प्रयोग करने से दानों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण की। वैसे देखो बरसात आधारित फसल है, यदि वर्षा पर्याप्त हो जाती है तो आवश्यकता हमारी फसल को नहीं होती है, लेकिन सिंचित खेती में फूल आने या फल बनने तथा दाना भरने के समय यदि वर्षा ना हो तो उस समय हमें एक हल्की सिंचाई अपनी फसल में करनी चाहिए। किसान भाइयों तो भाई खरपतवार का नियंत्रण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। समय समय पर हमें अपनी मूंगफली की फसल में निकाई गुड़ाई करनी चाहिए, जो खरपतवार है उनकी भैया गुड़ाई करके उनका नियंत्रण किया जा सके। किसान भाइयों अब बात आती है रोग व कीट नियंत्रण की, क्योंकि जब हम फसल अपने खेत में बोते हैं तो रोग भी लगते हैं, कीट भी लगते हैं, तो हम जो है समय अनुसार उनका नियंत्रण करना है, उनका प्रबंधन करना है। किसान भाइयों मूंगफली की फसल में मुख्य रूप से टिक्का रोग, तना सड़न, पत्ती धब्बा प्रमुख रोग हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें अनुशंसित फफूंदी नाशक का प्रयोग करें, जैसे कि भैया कार्बंडाजिम, मैंकोजेव या भैया थायोफिनेट मिथाइल का स्प्रे आप अपनी फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करें कीट की, तो किसान भाइयों माहू, सफेद ग्रब और लीफ माइनर जैसे कीट हमारे मूंगफली की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका नियंत्रण हमें समय से आवश्यकता अनुसार करना चाहिए और अनुशंसित कीटनाशकों का ही प्रयोग हम करना चाहिए। किसान भाइयों, उन्नत तकनीकों से 20 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक उपज हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसके अंतर्गत आज आपने जानकारी सुनी मूंगफली की उन्नत खेती विषय पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:15 हुए हैं श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के संदर्भ में।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे अनीता शर्मा के स्वर में भजन। समय रहेगा आज संध्या 7:32 पर। मृदुला रानी की वार्ता, 21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास। श्रोताओं, आप सुनेंगे ये कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज संध्या 6:45 पर।

आज सवेरे 9:25 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज आप सुनिएगा विजेंद्र की गाई रागिनी।

आज दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में हमारे श्रोता सुनेंगे सुंदरलाल गंधर्व का राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन। विलंबित गत एक ताल व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध होगी। तबले पर संगत करेंगे सनवर अली खान।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:31 पर हमारे श्रोता सुनेंगे सूचना ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, ये तो थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 होने को हैं, कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में काम करेगा ये विशेष कार्यबल।
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार। कहा रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन बेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा।
2: हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए।
0: इस अवसर पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।
2: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। मेरा आग्रह है कि

0: से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।
1: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई।
0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में हुए वृहद पौध रोपण का मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। वहीं बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी का प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करने पर ग्रुप की एक महिला सदस्य ने प्रसन्नता जताई।
2: जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा से विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर योजना की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों को 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कल ही मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं जिले के उझानी रेलवे स्टेशन से कल कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि लखनऊ के लिए नई ट्रेन शुरू होने से व्यापारी, मरीज और छात्रों सहित सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भी पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश की भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कल स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं ऋषिकांत सिंह चानबम ने इन खेलों में पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के स्याना चौपला के निकट कल देर शाम हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली से बिजनौर जा रहा एक 4-पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और दूसरी ओर से आ रहे एक अन्य 4-पहिया वाहन से टकरा गया। हापुड़ पुलिस के अनुसार दुर्घटना में घायल करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल के गठन की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीले कणी की अध्यक्षता में काम करेगा यह विशेष कार्यबल। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने

विदेश के लोगों से साझा किए अपने विचार, कहा रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की। इटावा और मैनपुरी में किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 7:31 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से सराबोर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, सवेरे के 7:31 हो चुके हैं और सूरज की इन सुनहरी किरणों के साथ शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आज का अंक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ मैं, आपकी अपनी प्रस्तोता नेहा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय के साथ जो साहस, सेवा और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत मिसाल है। साथियों, आज का दिन यानी 27 जुलाई का दिन भारत के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी श्रोताओं, और स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम लागू होने पर इसका नाम केंद्रीय पुलिस बल यानी CRPF रखा गया। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल की महत्ता को समझाते हुए इसे देश की आंतरिक सुरक्षा का एक सशक्त और बहुआयामी सुरक्षा बल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम बताया था। श्रोताओं, आज CRPF देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इस बल की विशेष इकाइयां जैसे रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और कोबरा अपनी दक्षता और वीरता के लिए देश विदेश में पहचान रखती हैं। वहीं इनका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। केवल एक नारा नहीं है बल्कि हर CRPF जवान के जीवन का संकल्प है। आज CRPF के स्थापना दिवस पर हम सभी CRPF के उन सभी वीर जवानों और शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनके साहस और बलिदान की बदौलत हम सुरक्षित और निश्चिंत अपने घरों में अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी पा रहे हैं।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: संदेश के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिनकी धुन सुनते ही एक अलग ही वातावरण बन जाता है। ऐसा ही एक अनोखा वाद्य यंत्र है बैग पाइप। श्रोताओं, बैग पाइप एक ऐसा पवन वाद्य यंत्र है जिसकी उत्पत्ति मूलतः स्कॉटलैंड में मानी जाती है। इसे बजाने के लिए चमड़े या कोई विशेष कृत्रिम कपड़े से बने एक थैले में हवा भरी जाती है और फिर उससे जुड़ी विभिन्न नालियों के माध्यम से मधुर और गूंजती हुई धुनें निकाली जाती हैं। और श्रोताओं, दिलचस्प बात तो ये है कि भारत के उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी बैगपाइप ने अपनी खास जगह बनाई हुई है। वहां इसे मशक बीन बाजा या मूसा बाजा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मेलों, विवाह समारोह आदि में भी इसे बजाया जाता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि हर वर्ष आज के दिन यानी 27 जुलाई को बैग पाइप प्रशंसा दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन इस प्राचीन और अनूठे वाद्य यंत्र के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और इसकी मनमोहक धुनों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, बैगपाइप के इतिहास पर अगर नजर डालें तो कभी बैगपाइप की गूंज युद्ध के मैदानों में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए भी सुनाई देती थी। वहीं आज भी इसकी धुनें परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब एक नजर डालते हैं उन खास जानकारियों पर जो 27 जुलाई यानी आज के दिन को और भी ज्यादा खास बनाती हैं। श्रोताओं, आज ही के दिन 1789 में अमेरिकी संविधान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की शुरुआत की गई थी। 27 जुलाई 1940 में एनिमेटेड लघु फिल्म ए वाइल्ड हेयर रिलीज हुई थी। श्रोताओं, अब आज के दिन साल 1963 में भारत की प्रसिद्ध गायिका के एस चित्रा का जन्म भी हुआ था। इनका पूरा नाम है कृष्णन नायर शांति कुमारी चित्रा। प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका के एस चित्रा को दक्षिण भारत की कोकिला और चिन्न कुंजू जैसे सम्मानजनक नामों से पुकारा जाता है। श्रोताओं, साल 2005 में पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण से सम्मानित के एस चित्रा ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अन्य कई भाषाओं में अनगिनत लोकप्रिय गीत गाए थे। और श्रोताओं, आज ही के दिन साल 1694 में आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय द्वारा शाही चार्टर जारी किए जाने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। इसे आधुनिक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली का आधार स्तंभ माना जाता है। श्रोताओं, इसका मुख्य उद्देश्य नौसेना के वित्त पोषण और राष्ट्र के ऋण प्रबंधन में मदद करना था। और श्रोताओं, अब हम नमन करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम ने अपनी मेहनत और लगन और सादगी से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। श्रोताओं, आपने ISRO और DRDO में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। साल 2002 से 2007 तक आप भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। 27 जुलाई 2015 को एक सभा में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रोताओं, आइए उनके प्रेरणादायक शब्दों को याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका कहना था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते।

श्रोताओं, एक खूबसूरत सा गीत आपने सुना और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये कार्यक्रम आप लाइव सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियों पर। शुरुआत अमर उजाला से करते हैं। पहली खबर है, शिक्षा का आधार सुधारेंगे नीलेकणी। परीक्षाओं की शुद्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। श्रोताओं, ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगी और भविष्य की सभी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम और उसकी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। अगली खबर है, मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला स्वर्ण, ऋषिकांत ने जीता रजत। ग्लासगो स्कॉटलैंड से यह खबर है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रविवार का दिन भारत के लिए सुनहरी खुशियां लेकर आया। भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता मीराबाई चानू ने स्वर्ण, जबकि ऋषिकांत सिंह ने पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग के स्नैच में 48 किलोग्राम उठाकर राष्ट्रमंडल खेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि क्लीन एंड जर्क ने दूसरे प्रयास में 105 किलोग्राम वजन उठाकर गेम्स रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक पक्का किया। श्रोताओं, अब एक और खबर है अमर उजाला से। मेरठ एक्सप्रेस वे दिल्ली देहरादून हाईवे पर 29 से भारी वाहन नहीं चलेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ पुलिस ने रूट डायवर्जन का प्लान तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं दैनिक जागरण की। इसमें पहली खबर है, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना हुई शुरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को उनका महत्व बताते हुए राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी सौंपी। संस्कृत के श्लोक से शुरुआत करते हुए गुरु के महत्व को बताते हुए कहा कि छात्र विदेशी षड्यंत्र और विघटनकारियों के भटकाव का शिकार न हो, ये शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की ही जिम्मेदारी है। अगली खबर है कि मन की बात में नाम आते ही विदुर हर्बल टी को मिली राष्ट्रीय पहचान। विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी की अब राष्ट्रीय पहचान हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इस चाय का जैसे ही उल्लेख किया, लखीवाला गांव की ये पहल देश भर में चर्चा का विषय बन गई। श्रोताओं, अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की पहली खबर है कि पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। ये खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापी है। अगली खबर है, पाकिस्तान से पीओके पर ही होगी बात, राजनाथ सिंह का ये कहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर पाकिस्तान से ना कोई बातचीत होगी। उन्होंने पाक पर आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हिस्सा बनाने का भी आरोप लगाया। और श्रोताओं, अगली खबर है, भारी बारिश के बाद सेना ने 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। अहमदाबाद से ये खबर है कि भारतीय सेना ने दक्षिणी गुजरात, अहमदाबाद तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक राहत और बचाव अभियान चलाकर जलमग्न और दुर्गम क्षेत्रों में फंसे 790 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। श्रोताओं, एक खबर दैनिक जागरण से है कि यूक्रेन में भारतीय क्रू मेंबर वाले एक और जहाज पर हमला, दो लापता। यूक्रेन के ओडिशो बंदरगाह पर भारतीय क्रू मेंबर वाले एक और व्यापक जहाज एमवी एजियन रैगनर पर शनिवार को हमला हुआ। जहाज के चालक दल में 4 भारतीय थे, इनमें से 2 लापता हैं, जबकि 2 अन्य सुरक्षित हैं। इससे पूर्व बीते रविवार को गिनी बिसाउ का झंडा लगे एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज को रूस ने रविवार को 3 क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। इसमें 4 भारतीयों की जान भी चली गई। और श्रोताओं, ये तो थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियां। और अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकार की जिनकी दमदार और अद्भुत अभिनय की जो
छाप थी वो हमेशा बॉलीवुड पर बनी रहेगी। और श्रोताओं, उस कलाकार का नाम है अमजद खान। 12 नवंबर 1940 को जन्मे अमजद खान ने अपने फिल्मी सफर में 130 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले में निभाया गया उनका गब्बर सिंह का किरदार उन्हें भारतीय सिनेमा का खलनायक बना देता है। उनके कई संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और उनकी अभिनय शैली आज भी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। इसके अलावा उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी और लावारिस जैसी कई फिल्मों में गंभीर, सकारात्मक और हास्यपूर्ण भूमिकाओं से अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। श्रोताओं, 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से आपका निधन हो गया, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का एक अमिट अध्याय है। आइए कार्यक्रम में चलते चलते आपको अमजद खान अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का ही एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
3: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
1: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Government to introduce public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
4: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State government and union territory administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of the upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent. The task force will also consist of former IB director Tapan Dekar, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. The Prime Minister added that the government is also moving forward towards introducing a new law in the Parliament today with stringent legal provisions regarding examinations.
5: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages. Addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat, My Bharat platform. The Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots realities, they strengthen India's journey towards inclusive development.
6: Viksit Vibrant Village ki ye yatra sabko jodne aur sabse judne ka hi ek sashakt madhyam hai aur ab आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
3: Speaking about the Viksit Vibrant Village program, the Prime Minister said the initiative was designed to inspire young people to visit, understand and engage with the country's border villages. He noted that the program received an overwhelming response with nearly 3 lakh youth participating in the competition, out of whom more than 400 were selected.
6: Viksit Gaon, Viksit Bharat ki aadharshila hai. Viksit Bharat ke nirman ki yatra lagatar chal rahi hai. और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
3: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज। फॉर क्विक न्यूज अपडेट्स अराउंड द क्लॉक, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. IMD said Odisha will experience widespread to extremely heavy rainfall under the influence of a depression over the northwest Bay of Bengal. Several districts are under red, orange and yellow warnings, with the administration maintaining heightened vigilance as the intense monsoon system continues to impact normal life. Heavy rainfall has triggered waterlogging, inundation and flood-like conditions in the parts of northern and coastal Odisha, prompting close monitoring by the authorities. More from our correspondent.
7: Odisha is in an intense monsoonal episode today as a depression over the northwest Bay of Bengal continues to unleash widespread rainfall across the state. The system is expected to move northwestwards and cross the North Odisha West Bengal coast between Paradip and Sagar Island around this forenoon or noon. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for Sundargarh, Keonjhar and Mayurbhanj districts for today, while orange warnings remain in force for several northern, central and coastal districts. In Bhadrak district, a flood-like situation has emerged in 7 gram panchayats of Banta block following a sharp rise in the Kapali River, disrupting road connectivity. The IMD has cautioned about thunderstorms, lightning and gusty surface winds, advising people to remain vigilant and avoid unnecessary movement in vulnerable locations. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
3: The nation pays tribute to former president and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. Union Home Minister Amit Shah paid tributes to the former President Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary. In a social media post, the Home Minister called Dr. APJ Abdul Kalam as the architect of India's space and missile program. US and Iran have paused attacks.

0: बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खत्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों की क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी के क्याम का ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर वजीर आजम के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्लाह बहिर असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान, गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गाँवों के साथ अपने रबतों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गाँवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की मायानाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हमारे श्रोताओं ने सुनी फिल्म तीसरी मंजिल से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत था आरडी बर्मन का।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सरगम का ये गीत। आनंद बख्शी की सब शब्द रचना है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म जूली से ये गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

0: करे।
1: श्रोता, जूली फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म सौतन की बेटी से ये गीत। सावन कुमार ने इस गीत के बोल लिखे हैं, वेदपाल शर्मा का संगीत है और आवाज है लता मंगेशकर की।

सौतन की बेटी, इस फिल्म से एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम गोल्डन हिट्स का ये अंतिम गीत। गीत है फिल्म कामचोर से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में ये गीत है। शब्द रचना इंदिवर की और संगीत है राजेश रोशन का।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हेड्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप जिले की हलचल सुनेंगे। आज आप सुनेंगे बाराबंकी और
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बाराबंकी और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
2: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विगत दिनों जनपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा रामनगर के श्री लोदेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा रामनगर और दरियाबाद में 542 करोड़ से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर यहां के लोगों को विकास की सौगात दी। इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस विरासत के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विगत दिनों जिला अस्पताल पहुंचकर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान बताते हुए लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। आगामी श्रावण मास मेले की तैयारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गी ने गत दिनों महादेवा मंदिर परिसर का व्यापक एवं गहन निरीक्षण कर सुरक्षा, निर्माण कार्यों, विद्युत व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास मेले की सभी तैयारियां सेफ्टी फर्स्ट की अवधारणा के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कहा कि श्रावण मास मेले में श्रद्धालुओं, कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैयारियां, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन रिस्पांस व्यवस्था की पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। प्रत्येक संवेदनशील स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की सूचना एवं त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनपद के कटुआ धाम स्थित जगजीवन मंदिर को नया पर्यटन स्वरूप देने की योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास परियोजना के तहत 202.51 लाख रुपए की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य सतनाम पंथ से जुड़े आस्था स्थल को विशिष्ट पहचान दिलाते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि समर्थ साहब बाबा जगजीवन दास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। ये पंथ सत की उपासना, मानवीय समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। इसकी मूल भावना आडंबरों और भेदभाव से परे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी धर्मों, पंथों और समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कर रही है। इसी क्रम में कोटवा धाम में जगजीवन राम मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 150 लाख की राशि जारी कर दी गई है। लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विगत दिनों रामनगर तहसील अंतर्गत सूरतगंज विकास खंड के तेजपुरवा गांव पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रशासन, सिंचाई विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने नदी तटबंधों, कटान संभावित स्थलों तथा जल निकासी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं। नई दिल्ली में सांस्कृतिक विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में देशभर से 25 यानी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR योगदान कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बाराबंकी की बेटी सिंपी मौर्या ने किया। सिंपी मौर्या को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुलकर द्वारा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिंपी मौर्या ने 200 से अधिक गुमनाम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन, संघर्ष और बलिदान की गाथाओं पर गहन शोध कर उन्हें अपने लेखन के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया है।
1: बाराबंकी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री पशुपालन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने गौ संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गौवंशों का टीकाकरण आवश्यक है। 2,62,400 गौवंशी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। गौवंशों को खुरपका मुंहपका एक विषाणु जनित संक्रमण रोग से बचाना है। उन्होंने कहा कि संक्रमण जनित पशुओं को बुखार आता है, मुंह से लार गिरती है, पैरों में छाले पड़ते हैं और चारा खाना छोड़ देता है, तो उसे पशुओं के झुंड से अलग कर दिया जाए। वर्षा काल में पशुओं को चारा दाना भूसा प्रतिदिन दिया जाए। गौवंशों का ईयर टैग आवश्यक है। राजमंत्री एक पेड़ माँ के नाम मूरतगंज गौशाला में आम का वृक्ष रोपित किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें फल के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। पौधों का जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा ने महिला उत्पीड़न मामलों की जनसुनवाई की। उन्होंने बताया कि महिला उत्पीड़न के मामलों में दहेज हत्या घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न में 2 दर्जन से अधिक फाइलों की जनसुनवाई की गई। जिला प्रशासन अधिकारियों को शिकायती पत्रों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कौशाम्बी जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। जिला अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार पाल ने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को जागरूक किया गया। रासायनिक खाद बीज और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण संतुलित उर्वरक का प्रयोग करने के लिए किसानों को जानकारी दी गई। मृदा परीक्षण स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों को जारी किया गया। कौशाम्बी जिले में संकल्प अभियान के अंतर्गत हर बच्चा स्कूल जाए गांव-गांव भ्रमण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्षा कल्पना सोनकर ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 100% स्कूलों में नाम दर्ज किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क किताबें, यूनिफार्म, जूते, मोजे क्रय करने के लिए अभिभावकों के खाते में धनराशि जारी की गई। शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि बच्चों का प्रवेश कराकर उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाए। कौशाम्बी जिले में किसानों को खरीफ फसलों के बीज निःशुल्क वितरित किया गया। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि किसान ऑनलाइन आवेदन स्मार्टफोन या जन सेवा केंद्र से कृषि विभाग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। किसानों को अरहर, उर्द, मूंग, तिल, सावा, कोदो, रागी, संकुल बाजरा, संकुल ज्वार, काकुन और कुटकी के बीज वितरित किया गया। चायल विकास खंड में 1546, मूरतगंज विकास खंड में 1495, नेवादा में 1898, मंझनपुर में 1713, सरसवा में 2234, कौशाम्बी में 2783, सिराथू में 1978 और कड़ा में 1824 किसानों को बीज वितरित किया गया। कौशाम्बी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सिराथू विकास खंड में साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण साक्षरता अभियान का आयोजन ब्लॉक परिषद में किया गया। पैरा विधिक स्वयं सेवा सतीश सिंह ने बताया कि लोगों को नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन योजना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवाओं के लिए गरीब बेसहारा लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में वृक्षारोपण महायज्ञ दिवस पर कपिवन आश्रम में फलदार आम का पौध मंडलायुक्त ने रोपित किया। मंडलायुक्त समय अग्रवाल ने बताया कि वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कपिवन में एक पौध आम का रोपित किया। उन्होंने कहा कि 39,81,200 पौध रोपण का लक्ष्य जिले को निर्धारित किया गया है। वन विभाग द्वारा 24 लाख, कृषि विभाग द्वारा 7 लाख, उद्यान विभाग द्वारा 3 लाख तथा पर्यावरण विभाग द्वारा 1 लाख, पंचायती राज विभाग द्वारा 1 लाख, राजस्व विभाग द्वारा 1 लाख, नगर विकास विभाग द्वारा 74,000, पशुपालन विभाग द्वारा 23,000, स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा 19,000, सिंचाई विभाग और जलकर संसाधन एवं रेलवे द्वारा 15,000, लोक निर्माण विभाग द्वारा 14,000, उद्योग विभाग द्वारा 11,000, बेसिक शिक्षा एवं गृह विभाग द्वारा 9,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 8,000, नमामि गंगे द्वारा 7,000, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग द्वारा 5,000, श्रम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा 2,000 पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में जिला जेल का जिला जज द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला कारागार अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कारागार की साफ सफाई, मरीजों का उपचार और बंदियों को भोजन वितरण की एक एक बंदी से जानकारी ली गई। महिला बंदियों से उनके साथ मौजूद बच्चों के खान पान एवं दुग्ध वितरण की जाँच की गई। जिला कारागार में निरुद्ध असहाय बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विजेंद्र केसवर में रागिनी।

0: अनुष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
1: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
0: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
1: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर हैं
0: 0134123015
1: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
0: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
1: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
0: सजीव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो बासमती।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज हमारे श्रोता सुन रहे हैं विजेंद्र केसवर में रागनी।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दिन के 10 बजे हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी नेहा शर्मा
1: और श्रोताओं श्वेता भट्ट का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप जानते ही हैं कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो हमें मैसेज करने के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा नंबर।
1: श्रोताओं, आप कार्यक्रम से जुड़े हमारे साथ, अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें मैसेज करें अपना नाम, पता और पसंद का गीत और भेज दीजिए उस चॉइस को इस नंबर पर। हमारा आकाशवाणी का नंबर है 9457078288।
0: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9457078288। इस नंबर पर जब तक हमारे श्रोता हमें करते हैं मैसेज, क्यों ना श्रोता एक प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की।
0: सत्या फिल्म का एक गीत है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है विशाल का।

0: सत्या फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। और श्रोता कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शराबी फिल्म का एक गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत है और इस गीत की फरमाइश हमारे पास पत्रों के माध्यम से आई है। ये पहला पत्र हमारे पास है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। भेजने वाले हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा।
1: और नेहा कुछ मैसेज भी हमारे श्रोता हैं जो भेज रहे हैं और ये कार्यक्रम का पहला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद सैन, जन्नत और इनके परिवार के सभी सदस्य। और
0: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: मोहल्ला हलवाईन शेरकोट जिला बिजनौर से फरमाइश कर रहे हैं सिर्फ गीत के लिए मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
0: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय।
1: और ये मैसेज हमें मिला है सनावत से शेख मुसभा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजू बोड़ाना का और इसी गीत के लिए फरमाइश कर रहे हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुश दिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू दिलखुश, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुश दिल, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा परिवार।
0: तो आइए श्रोताओं आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से। भेजने वाले हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्रांजल, प्रांजलि सोहम और इनके सभी साथी। पुराना तालाब डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी और इनकी प्यारी बिटिया सोनम। सारिमपुर बक्सर से शफरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी, बेबी अंसारी और छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती।
1: और नेहा, कुछ मैसेज हमें भेजे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरंकर, रतनमाला सुरलकर और आरती सुरलकर, साथ ही इनके हैं कुमकुम गुड़िया। इसके अलावा हमें मैसेज किया है नेहरू चौक पैंठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और जालना शहर से फरमाइश कर रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। इसी के साथ ही मैसेज हमें मिला है सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। और आप हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
0: और श्रोताओं, परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और मीर सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी साथी। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीता आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद्रम से हैं वलीउल्लाह फकीर, डब्लूउल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से हमें पत्र भेज रहे हैं बद्रू वली अंसारी, फजरू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। अगला पत्र हमें मिला है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार का।
1: इसी गीत को सुना चाहते हैं शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, साईराज सबकाल और विशाल सबकाल। और एक और मैसेज हमें मिला है ग्राम पंचायत कालेगांव साफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्व देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और इनके साथ हैं कुमारी कल्पना देशमुख।
0: आइए श्रोताओं, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सरफरोश फिल्म का एक गीत। आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है। शब्द रचना समीर की और संगीत है जतिन ललित का।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म द डर्टी पिक्चर से, जिसमें आवाज़ है कमाल खान की, गीत लिखा है रजत अरोड़ा ने और संगीत है विशाल शेखर का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है फूलगांव निज़ामाबाद तेलंगाना से एम ए वाहिद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकर्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल ने। और इसी गीत के लिए मैसेज मिला है हमें उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। और आप हैं गांव हिप्पर सोगा तहसील औसा ज़िला लातूर से उस्मान सैफ फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। और ये मैसेज हमें मिला है पटियाली रोड गंजटुंटवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, अकील कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। हमारी श्रोता हैं फरुखाबाद साहब गंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, पवन कौड और उनके सभी दोस्त, साथी हैं योगेंद्र नायक। और ये मैसेज हमें मिला है कोरगांव से सुरेश मलोदे और वर्षा मलोदे का। और आप हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। इस गीत को सुना चाहते हैं कलाम रोड हुरगोबिंद नगर नवाब शहर पंजाब से सुरिंदर सिंधु, अनीता सिंधु, रोहित सिंधु, रितेश सिंधु, शिखा सिंधु और प्रतीक्षा सिंधु, साथी हैं मैक्स। ये मैसेज हमें मिला है कनीरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, केतु, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। इस गीत को सुना चाहते हैं नलेश्वर गांव नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नोहारकर, निर्मला नोहारकर, विशाल नोहारकर, मलकापुर से नारायण इगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर। ये मैसेज हमें मिला है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का। इन्हीं के साथ जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से फरमाइश कर रहे हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद परीक अंसारी।

रऊफ भाई और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, ईरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान और इनके सभी साथी। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी। शाही मार्केट सोहारा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म द डर्टी पिक्चर का ये गीत।

0: द डर्टी पिक्चर, इस फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगली पेशकश है फिल्म चालबाज से। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।
1: और इस गीत को सुनने के लिए नेहा हमें फरमाइश की है वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। और इस गीत को सुना चाहा है शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, सुजीत कुमार, अशोक कुमार, पहाड़ी सान्याल, अनीता गुहा, अभी भट्टाचार्य, मदनपुरी, फरीदा जलाल, सुभाष घई। और ये फरमाइश की है ज़िला खारगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईचान, भाई राजकुमार पोडाना और सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, और दिलीप कुमार सोनी के साथ इनके परिवार के सभी सदस्य। इसके अलावा ये मैसेज हमें भेजा है मुरादाबाद से सैफी अहमद अंसारी, रईस दुल्हा अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बासार रोड मुंगीसापुर से हमें फरमाइश कर रहे हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। मुगलापुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नसीर, साजिद शाहिद। और गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश की है जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर ने। और ये फरमाइश हमें मिली है सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। ये मैसेज है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश का।
0: और कुछ पत्र भी हमें इसी गीत की फरमाइश के साथ मिले हैं। ये है श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा जी का पत्र। और अगला पत्र हमें मिला है शाहनाजार औरंगाबाद संभाजी नगर से, भेजने वाले हैं रुकनुद्दीन तनोली, सानेर तनोली, सानिया तनोली और इनके सभी मित्र। अगला पत्र हमें मिला है अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से, मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद का। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्लाह आज़ाद। अगला पत्र हमें मिला है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, लिखने वाले हैं अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी, पूनम रानी, नवासा अरहान बाबू, हमजा बाबू, साजिया शाहीन, नाजिया नूरी, बच्चू शेख, चीना शेख, नवासी सुमेरा नाज, हुमेरा नाज और मुजम्मिल बाबू। कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरनगर से हैं मोहम्मद फैसल शेख और नुसरत जहां। शेख टोली समस्तीपुर से हैं मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसरत जहां। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हमें पत्र भेज रहे हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ मराठा, परिसंजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे।
1: और फिल्म चालबाज के इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से, गुलाम हजम, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान और मदीहा। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। और ये मैसेज हमें भेजा है डाबकी रूट अकोला से सुशीला देवी, सदानंद और कुमार गौरव ने। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है संगीता टाकेज शाहगंज आगरा से, महफूज पटेल अंसारी, फिरदोस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी और हसन चिंटू ने। और ये मैसेज है नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरमंत कौर और मनु। इसी गीत को सुना चाहा है, ये फरमाइश हमें मिली है कस्बा गुनौर यूपी से, फारूक खान, फैजी फराज और फरहीन फरहान फारिया ताहिरा की। गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से फरमाइश कर रहे हैं, इसी गीत के लिए सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदरा और इनके परिवार के सभी सदस्य जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुना चाहते हैं। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का एक गीत फिल्म चालबाज से। आवाजें हैं अमित कुमार और कविता कृष्ण मूर्ति की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की। गांव भड़बूजी, जिला आगरा, माकव से, मध्य प्रदेश से हैं रघुनाथ, बेटी सुषमा, मंजू, बबीता और ओम प्रकाश। मौला हलवाइयां, शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। मोहाली पंजाब से हमें पत्र भेज रहे हैं बब्बन मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। सहारनपुर से ये हमें मिला है पत्र आशा नारंग और सुरेश नारंग का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान हमें पत्र भेज रहे हैं बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहेटी बरेली से। अगला पत्र हमें मिला है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ का। और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेज रहे हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान और साथ में है माहिरा नूर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरे यार की शादी है से, जिसमें आवाजें हैं सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है जीत प्रीतम का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज के माध्यम से फरमाइश की है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। और ये मैसेज है गाँव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयाण, शमशेर भयाण, सुरेंद्र भयाण, मनोज भयाण और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये मैसेज है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से अहम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान ने। गुजरात गांधी ग्राम से फरमाइश की ऐसे गीत के लिए प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जोहरी ने। आप हैं निरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इन्होंने हमें मैसेज तो किया है लेकिन अपना एड्रेस नहीं लिखा है मैसेज में। और MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश की है इस गीत के लिए सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरब खुराना और SK पपी ने। ये मैसेज हमें मिला है एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण, ललिता खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। भटिंडा रोड डबवाली से फरमाइश की है सी गीत को सुनने के लिए राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमें मैसेज किया है इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, महराज अंसारी और बाबू अंसारी ने। तेलंगाना भोंगीर से फरमाइश की है मोहम्मद बुरहाउद्दीन और फैज़ान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा अजमीन गुड़िया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाटी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, पाणी खेड़ा और BR खेड़ा के साथ फरमाइश कर रहे हैं जीवन सिंह बुक। और आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज और साहिल बजाज के साथ फरमाइश कर रहे हैं इस गीत को सुनने के लिए बिट्टा बजाज।

इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मैसेज के माध्यम से भेजी है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से फरमाइश की है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। इसी गीत को सुना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। और ये मैसेज हमें मिला है कंस्टून द्वारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव का। और इसी गीत के लिए ये मैसेज हमें मिला है कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके समस्त परिवार साथी। और आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहार, सुनील पाठक। आप हमें फरमाइश कर रहे हैं ग्राम लोहेडी, ज़िला महोबा, बुलेंदखंड, यूपी से। और ये मैसेज है हमारे श्रोता शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन और ये फरमाइश कर रहे हैं सब्जी मंडली बुल डैनर से। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मैसेज हमें किया है यशमित यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह ने। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार के सभी सदस्य भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। और ये मैसेज है गांव गधारूना पोस्ट लंढोरा रुड़की से मदन गिरी, विमला देवी, बलराम गिरी, मधु देवी, भारती गिरी, सोनिया देवी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी, दिव्या गिरी और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म हम तुमसे।

0: बैगन तौलिया कहीं फर्श पे, टूथपेस्ट का ढक्कन कहीं, कल के मुंह से उलट के पहने।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। पूर्वाहन के 11 बज रहे हैं। आइए आप सुनते हैं चित्रपट संगीत। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में, और आज का चित्रपट संगीत लेकर आपके सबसे चर्चित, सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे लोकप्रिय खलनायक अमजद खान। जी हाँ श्रोताओं, एक ऐसा अभिनेता जिसने साबित कर दिया कि अभिनय का जादू नायक और खलनायक में फर्क नहीं करता। अगर सच्चा कलाकार हो तो उसका किरदार अमर हो जाता है। और श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अमजद खान अभिनीत फिल्म याराना से।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म थी याराना, गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था राजेश रोशन का। और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है हमसे है जमाना। गीत लिखा है राम लक्ष्मण ने और संगीत है माया गोविंद का। श्रोताओं, अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को मुंबई में हुआ था और बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनय उनके खून में था। उनके पिता प्रसिद्ध अभिनेता जयंत, जिनका असली नाम जकारिया खान था, वे हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय चरित्र अभिनेता और खलनायक रहे। घर में फिल्मी माहौल था, बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। यही कारण था कि बचपन से ही अमजद की रुचि अभिनय की ओर बढ़ती चली गई। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की और बाद में आरडी नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में खूब भाग लेते थे। मंच पर उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। शायद किसी ने तभी कह दिया था कि ये लड़का एक दिन बड़ा अभिनेता बनेगा। और बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि अमजद खान ने कैमरे का सामना बचपन में ही कर लिया था। सिर्फ 11 वर्ष की आयु में वो फिल्म नाजनीन, जो कि 1951 में प्रदर्शित हुई थी, उसमें बाल कलाकार के रूप में अमजद खान दिखाई दिए। हालांकि उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार खलनायक बनेगा। और धीरे धीरे समय बीतता गया। फिल्मी परिवार होने के बावजूद सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। उन्होंने वर्षों तक छोटे छोटे रोल किए। कई निर्माताओं ने कहा कि चेहरा हीरो जैसा नहीं है, किसी ने कहा आवाज बहुत भारी है, तो किसी ने कहा शरीर बहुत भारी है। लेकिन अमजद खान ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अभिनय केवल चेहरे से नहीं, प्रतिभा से होता है। इसी दौरान उन्होंने रंगमंच पर भी खूब काम किया, थिएटर करके अभिनय को अपने और भी मजबूत बनाया। और श्रोताओं, फिर शुरू हुआ 70 का दशक। अमजद खान लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक बड़ी पहचान उनसे दूर थी। कुछ फिल्में आईं, कुछ चलीं, कुछ नहीं चलीं, लेकिन वो एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दे। उन्हें भी शायद नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा किरदार लिख चुकी है। और फिर साल आता है 1975, निर्देशक रमेश सिप्पी की महत्वाकांक्षी फिल्म शोले बन रही थी। गब्बर सिंह के किरदार के लिए कई नामों का विचार हुआ और कहा जाता है कि शुरुआत में अभिनेता डैनी को इस भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन दूसरी फिल्मों में व्यस्तता के कारण वो फिल्म नहीं कर सके। और अब तलाश शुरू हुई एक ऐसे चेहरे की जो डर पैदा कर सके, जो संवाद बोलते ही जिसके सन्नाटा छा जाए, जिसकी हंसी सुनकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसी दौरान लेखक सलीम जावेद ने अमजद खान का नाम सुझाया। जब उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ तो शुरू में कुछ लोगों को लगा कि उनकी आवाज अपेक्षा से धीमी है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने संवाद बोले, सबको एहसास होने लगा कि इस इंसान में कुछ अलग है। और फिर शुरू हुई फिल्म शोले की शूटिंग। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की अभिनीत फिल्म हमसे है जमाना का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शोले से, जिसमें आवाजें हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आरडी बर्मन का। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अमजद खान की। दौर आया अगस्त 1975 का, जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म शोले। शुरुआत में फिल्म को उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे दर्शकों ने फिल्म देखी, उसका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। धीरे धीरे लोग फिल्म दोबारा और फिर तीसरी बार देखने लगे। एक समय ऐसा आया कि टिकट खिड़कियों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई किसकी? नायक जय और वीरू की या ठाकुर की? नहीं, सबसे ज्यादा चर्चा हुई गब्बर सिंह की। जी हाँ श्रोताओं, हिंदी सिनेमा का शायद पहला अवसर था जब एक खलनायक की लोकप्रियता फिल्म के नायकों के बराबर, बल्कि कई जगहों पर उनसे भी अधिक हुई। बच्चे गब्बर की नकल करने लगे, कॉलेजेस में उनके संवाद बोले जाने लगे, नुक्कड़ नाटकों में गब्बर दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि विज्ञापनों में भी गब्बर की शैली अपनाई जाने लगी। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है? अमजद खान ने कई ऐसे संवाद बोले जो आज भी लोगों की जुबान पर अमिट हैं। इन संवादों की सबसे बड़ी खासियत थी उनके बोलने का अंदाज। वो चिल्लाते नहीं थे, वो ठहर ठहर कर बोलते थे और यही ठहराव डर पैदा करता था। और श्रोताओं, शूटिंग के दौरान अमजद खान इतने गंभीर होकर अभिनय करते थे कि कई बार उनके सह कलाकार सचमुच घबरा जाते थे। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और पूरी यूनिट बताते हैं कि अमजद खान सेट पर सबसे ज्यादा मजाक करने वाले कलाकारों में से एक थे। और अमिताभ बच्चन, अमजद खान की दोस्ती तो बेहद अच्छी रही और आज भी इनकी चर्चा होती है। और दोनों ने साथ में कई फिल्में की, जैसे शोले, मुकद्दर का सिकंदर, लवारिस, याराना, सत्ते पे सत्ता, नसीब और देश प्रेमी। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं फिल्म शोले का ये गीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। फिल्म है सुहाग, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, 1975 के बाद फिल्म शोले के बाद 1982 में फिल्म आई याराना। इस फिल्म में अमजद खान ने अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका में भूमिका निभाई और ये किरदार पूरी तरह से सकारात्मक था। दर्शकों ने पहली बार देखा जो कलाकार गब्बर बनकर डराता है वही दोस्त बनकर भावुक भी कर सकता है। अमजद खान की कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। उन्होंने नई फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जिन्हें देखकर दर्शक खूब हंसे। उनकी संवाद अदायगी और चेहरे के भाव हास्य भूमिकाओं में भी उतने ही प्रभावशाली थे जितनी उनकी विशेषता एक विलेन के तौर पर थी। वो हर किरदार में ढल जाते थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की फिल्म सुहाग का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, कुछ कलाकार सिर्फ फिल्में नहीं करते, वो इतिहास रचते हैं। कुछ चेहरे समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे पीढ़ियों की यादों में बस जाते हैं। अमजद खान ऐसा ही एक नाम है। उन्होंने सिखाया कि अभिनय की कोई सीमा नहीं होती। अगर कलाकार अपने किरदार में पूरी तरह से उतर जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और जब भी कोई मुस्कुरा कर कहता है कितने आदमी थे, तो अच्छा लगता है। जैसे भारतीय सिनेमा का वह अमर गब्बर आज भी हमारे बीच मौजूद हो। आज ही के दिन यानी 27 जुलाई 1992 को मात्र 51 वर्ष की आयु में मुंबई में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक को खो दिया।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय पूर्वाहन के 11:30 और लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधे नगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से,

0: एचपी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
1: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
1: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
1: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीशोरी, पूजा और पायल कुमारी,
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जोनबिल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जोनबिल मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं कि बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पोध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक।

0: कार्यक्रम होगी। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ,
3: देखिए, रखो, देखिए।
2: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
7: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
8: वहाँ अंगुलीमाल है।
7: हाँ प्रभु।
8: वो बहुत बड़ा डाकू है।
9: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
8: जाएं।
9: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
7: ना जाएं प्रभु।
10: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?

0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
1: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
2: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुली माल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल से कहा,
1: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
3: हाँ ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुलके का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
5: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
6: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
6: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
7: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए

0: अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है।
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
2: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
6: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
7: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
8: जगबंधु,
7: चेतना
8: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में।

संसद समीक्षा आज रात्रि 8 बजे, पब्लिक स्पीक प्रोग्राम आज रात्रि 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

अनीता शर्मा के गाए मधुर भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर। 21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास मृदुल रानी की ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुनिएगा विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय होगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व और वार्ताकार होंगे डॉक्टर अरविंद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी मेडिकल कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से, जिनसे बातचीत करेंगे सुवेंद्र सिंह। साथ ही होगी चर्चा धान की फसल का खैरा रोग व नियंत्रण विषय पर। युवाणी रोज की ही तरह शाम 5:15 पर, जिसमें आज क्रम रहेगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रैश कोर्स, पैसा वसूल, कहानी के उस पार, बूस्टर्स, साथ ही साथ गीत संगीत भी। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5:00 जानकारी रहेगी महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली आत्मनिर्भर भारत SRI फंड और क्रेडिट गारंटी योजना के संदर्भ में। हिम्मत राम दुद्रेजा की गाय गुजराती लोकगीत आप सुनेंगे आज दोपहर 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत।

आज दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम परिवार जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे लघु नाटिका नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। आलेख दीप्ति माहेश्वरी, निर्देशन अंकित सैनी, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा और प्रतिभागी कलाकार होंगे प्रमोद सिंह, नमित राज, दीप्ति माहेश्वरी और अंकित कुमार। साथ ही रहेगी जानकारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुण्यतिथि पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज दिन में 12:05 पर सुनिएगा पंडित सुंदरलाल गंधर्व का बांसुरी वादन, आप पेश करेंगे राग अहीर भैरव और आपके साथ तबले पर संगत करेंगे सनवर अली खान।

श्रोताओं, आकाशवाणी नजीब आबाद केंद्र से फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। आज दिन में 12:30 पर प्रोग्राम मिड डे मेलोडी में फिल्म संगीत नई फिल्मों से आज अपराहन 2:30 पर सदाबहार नगमों का कार्यक्रम छाया गीत सुनिएगा आज शाम 6:55 पर। गीत संध्या कार्यक्रम होगा आज शाम 8:00, साथ ही 8:30 पर रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय दिन के 12:05 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में लीजिए पेश है पंडित सुंदरलाल गंधर्व का बांसुरी वादन। आप पेश कर रहे हैं राग अहीर भैरव। विलंबित एक और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं सनवर अली खां।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, आप सुन रहे थे पंडित सुंदरलाल गंधर्व का बांसुरी वादन। आप पेश कर रहे थे राग अहीर भैरव। विलंबित एक और द्रुत तीन ताल में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे सनवर अली खां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय दिन के 12:30 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। स्वागत है सभी श्रोताओं का आज के मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही मन को एक मध्यम सा सुकून मिल जाता है। वो आवाज़ें केवल गीत नहीं गाती बल्कि भावनाओं को सुरों में पिरो देती हैं। ऐसी ही एक मधुर, निर्मल और सुकून रश्क आवाज़ है KS चित्रा की, जिन्हें प्यार से दक्षिण की कोकिला और मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है। 4 दशक से भी अधिक लंबे अपने संगीत सफर में उन्होंने 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए और भारतीय संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। KS चित्रा सिंह का पूरा नाम श्रोताओं कृष्णन नायर शांताकुमारी चित्रा है। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 27 जुलाई वर्ष 1963 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। पिता KS कृष्णन नायर स्वयं संगीत के जानकार थे, तो घर का वातावरण पूरी तरह से संगीत से जुड़ा हुआ था। यही कारण था कि चित्रा का झुकाव बचपन से ही संगीत की ओर रहा। कम उम्र में ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत की दिशा में शिक्षा लेनी शुरू कर दी। आगे चलकर उन्होंने स्वाति तिरुनाल संगीत महाविद्यालय से संगीत की विधिवत शिक्षा ली। उनकी मधुर आवाज, सुरों का अद्भुत पकड़ और

कठिन से कठिन रचनाओं को सहजता से गाने की क्षमता ने उनके शिक्षकों को भी प्रभावित किया। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें हैं और भी, लेकिन अब आपका मनोरंजन करवाते हैं और आपको सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत जो हमने लिया है फिल्म विरासत से।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गायिका चित्रा सिंह की। श्रोताओं, वर्ष 1979 में उन्हें मलयालम फिल्म अट्ठासाहन में अपना पहला फिल्मी गीत गाने का अवसर मिला और यहीं से उनके व्यावसायिक गायन की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी गीत गाने शुरू किए। संगीतकार एम एस विश्वनाथन, इलाया राजा, के वी महादेवन और बाद में ए आर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें लगातार अवसर दिए। दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वे लगभग हर बड़े संगीतकार और हर अभिनेत्री की पसंदीदा पार्श्व गायिका बन गई। दक्षिण भारत में अपनी पहचान स्थापित करने के बाद धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में भी के एस चित्रा का प्रवेश हुआ। फिल्म रोजा के हिंदी संस्करण के गीतों ने उत्तर भारत के श्रोताओं का ध्यान उनकी ओर खींचा। फिल्म बॉम्बे, परदेश, रोजा, विरासत, दिल से, अशोका, क्रिमिनल और कोई मिल गया जैसी फिल्मों में उनकी आवाज़ ने लाखों श्रोताओं का दिल जीत लिया और संगीतकार ए आर रहमान के साथ उनका संगीत सफर बेहद यादगार रहा। श्रोताओं, के एस चित्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने कभी किसी अन्य गायिका की शैली अपनाने का प्रयास नहीं किया। जब हिंदी फिल्म संगीत में स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी दिग्गज गायिकाएं सक्रिय थीं, तब भी के एस चित्रा ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज की मिठास और शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव ने उन्हें विशिष्ट स्थान दिलाया। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गीत जो हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से।

पूजा फिल्म का ये गीत शब्द रचना थी पीके मिश्रा की और संगीत था एआर रहमान का। श्रोताओं, के एस चित्रा भारतीय सिनेमा जगत की सबसे सम्मानित गायिकाओं में गिनी जाती हैं और उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के अनेक राज्य फिल्म पुरस्कार मिले। दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी उन्हें कई बार सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उनके संगीत में असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2005 में पद्मश्री और वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये सम्मान उनके दशकों लंबे संगीत साधना की पहचान है। और कार्यक्रम में अब आपको गीत सुनवाते हैं फिल्म परदेश से। आवाजें हैं शंकर महादेवन और चित्रा सिंह की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिड डे मेलोडी आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में आज बात हो रही है पार्श्व गायिका चित्रा सिंह की। श्रोताओं, साल 2011 में KS चित्रा के जीवन में एक ऐसा दुख, एक ऐसा कठिन समय आया जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। दुबई में आयोजित एक कॉन्सर्ट के दौरान उनकी 8 वर्ष की बेटी नंदना का एक स्विमिंग पूल दुर्घटना में निधन हो गया। ये घटना चित्रा और उनके परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। इस गहरे दुख के बाद उन्होंने कुछ समय तक सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली, लेकिन संगीत के प्रति उनका समर्पण उन्हें फिर से मंच पर ले आया और आज वे नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। KS चित्रा केवल गायिका नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो मधुर पहचान है जिन्होंने भाषा की सीमाओं को मिटाकर सुरों के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। मलयालम से लेकर हिंदी तक, तमिल से लेकर तेलुगु, उनकी आवाज़ हर भाषा में उतनी ही आत्मीय लगती है। और आज भी कोई भी गीत जब रेडियो पर बजता है तो लगता है जैसे संगीत स्वयं मुस्कुरा उठा हो।

श्रोताओं, स्वर सम्राज्ञी के एस चित्रा आज भी हमारे बीच रहकर अपनी कर्णप्रिय आवाज से संगीत प्रेमियों का दिल जीत रही हैं। चार दशकों से भी अधिक समय से भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने वाली ये महान गायिका आज भी सुरों की उसी गरिमा और सादगी के साथ संगीत साधना में निरंतर सक्रिय है। और आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाओं के साथ हम सब मिलकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।

कुछ आवाज़ें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वो हर दौर में नई लगती हैं। सुर बदलते रहते हैं, संगीत बदलता रहता है, लेकिन मधुरता की पहचान कभी नहीं बदलती। के एस चित्रा की आवाज़ भी ऐसी ही अद्भुत पहचान है जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। और श्रोताओं, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का मिड डे मेलोडी प्रोग्राम संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाज़त।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मिड डे मेलोडी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। आप पहचान ही गए होंगे कि आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी ज्योति। श्रोताओं, इस सुहावने मौसम का तो हम आनंद ले ही रहे हैं। जैसे ही अत्यधिक गर्मी होती है, वर्षा की हल्की हल्की फुहार उस गर्मी में शीतलता का एहसास कराती हैं। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में जहां हम देखते हैं कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की। श्रोताओं, इस समय जामुन, आम आदि की गुठली जमीन में जहां भी पड़ती है उसमें से पेड़ उग जाता है, तो उस पेड़ को सुरक्षित जगह पर जरूर लगाएं, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो और वो वृक्ष बनकर हम सभी को फल और छाया दे। तो श्रोताओं, ये तो हमने बात की हरियाली की और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की। श्रोताओं, इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बरसातों का मौसम बीमारियां अधिक लाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम स्वास्थ्य का ध्यान दें, जैसे बाहर का बना हुआ भोजन बिल्कुल ना खाएं, और अगर खाना जरूरी है तो साफ सुथरा हुआ बना हुआ भोजन ही लें, और ढका हुआ भोजन हो ये जरूर देख लें। कोशिश करें पैकेज्ड फूड कम से कम प्रयोग में लाएं, और हाँ, पानी अधिक से अधिक पिएं, और पानी उबला हुआ ही प्रयोग में लाएं। साथियों, हरी पत्ते वाली सब्जियों का सेवन इस मौसम में हमें कम ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं जो जल्दी से नष्ट नहीं होते, और वो हमारे पेट में जाकर हमें बीमार करते हैं। श्रोताओं, फलों का सेवन करें, परंतु साफ सुथरे कटे हुए बाजार के फल हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में उनका सेवन बिल्कुल ना करें। श्रोताओं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन अपनी प्रकृति के अनुसार और सीमित मात्रा में ही करें, और हाँ, नियमित योगा मेडिटेशन हमें स्वस्थ बनाए रखता है। नियमित दिनचर्या अपनाएं, समय पर भोजन, 7 से 8 घंटे की नींद, और दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम करके हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज के दिन विशेष की, जिसे हम मना रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। हम और जानकारी साझा करेंगे, परंतु उससे पहले आइए सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

श्रोताओं, संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम परिवार जगत में। श्रोताओं, कुछ लोग जीवन जीते हैं और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, शिक्षक और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। 27 जुलाई एक तारीख नहीं बल्कि उस महान आत्मा को श्रद्धा पूर्वक याद करने का दिन है जिसने अपने पूरे जीवन को देश, विज्ञान और युवाओं के सपनों के लिए समर्पित कर दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके विचारों और अमूल्य योगदान को नमन करते हैं। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाते थे। बचपन में वे अखबार

थे ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च निकाल सके, लेकिन गरीबी उनके सपनों के बीच में कभी नहीं आई। श्रोताओं, वे जानते थे परिस्थितियां इंसान को कभी नहीं रोकती, हौसला उसे आगे बढ़ाता है। उन्होंने कठिन परिश्रम, अनुशासन और शिक्षा के बल पर मुकाम हासिल किया, जहां पहुंचना लाखों लोगों का सपना होता है। डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक रहे। पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइल के विकास में उनके नेतृत्व ने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें पूरा देश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता था। श्रोताओं, सन 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वह ऐसे राष्ट्रपति थे जो केवल राष्ट्रपति भवन तक सीमित नहीं रहे। श्रोताओं, वे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करते थे। वे मानते थे कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा सपना था एक विकसित भारत। वे कहते थे कि यदि देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को भीतर बड़े सपने देखने का साहस जगाना होगा। उनका प्रसिद्ध और बहुत ही प्रसिद्ध कथन था, सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये श्रोताओं, ये केवल एक वाक्य नहीं, जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्र निर्माण का आधार है। वे हमेशा जिज्ञासा, नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते थे। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी उनके जीवन में अहंकार का कोई भी स्थान नहीं था। श्रोताओं, वे अत्यंत सादा जीवन जीते थे। उनके पास निजी संपत्ति ना होकर विचारों की संपत्ति बहुत ही अनमोल थी। 27 जुलाई 2015 का दिन पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद था। डॉक्टर कलाम मेघालय के शिलोंग में विद्यार्थियों के रहने योग्य गृह विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। मंच पर बोलते बोलते उन्हें हृदयाघात आया और उनका वहीं पर निधन हो गया। श्रोताओं, ये संयोग नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे सुंदर संदेश था कि उन्होंने अंतिम सांस भी उसी कार्य में ली जिसे वे सबसे अधिक महत्व देते थे। जी हाँ, युवाओं को प्रेरित करने में। श्रोताओं, कलाम जी के विचार हमें सिखाते हैं कि बड़ा सोचिए और ईमानदारी से काम कीजिए, विज्ञान और नवाचार को अपनाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें, शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा निवेश मानिए, देश हित को सर्वोपरि रखें। श्रोताओं, आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि केवल पुष्प अर्पित करके नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर कर सकते हैं। आइए हम सब प्रण लें कि अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और राष्ट्र प्रेम को स्थान देंगे। हम बड़े सपने देखेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने देश को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रोताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ रहेंगे। इसी भावना के साथ महान वैज्ञानिक, भारत रत्न, पूर्व राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की उनकी पुण्यतिथि पर हम शत शत नमन करते हैं। श्रोताओं, आज हमारी युवा पीढ़ी का बहुत बहुत आवश्यक है कलाम जी के विचारों को आत्मसात करना। श्रोताओं, आज की हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक चुकी है। इस मोबाइल की रंग बिरंगी दुनिया में, इस नेटवर्क में कहीं वे खो गए हैं। श्रोताओं, वो कैसे और इसके परिणाम कितने घातक हैं, आइए जानने के लिए सुनते हैं ये लघु नाटिका जिसका विषय है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। श्रोताओं, इसमें प्रतिभागी कलाकार हैं प्रमोद सिंह, नमित,
दीप्ति माहेश्वरी, अंकित सुरेंद्र, आलेख है दीप्ति माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा, निर्देशन है अंकित सैनी का। तो आइए सुनते हैं ये लघु नाटिका।

ओ बहू सुनीता, अरे कहाँ गए सब, जरा एक गिलास

0: अरे कहाँ गए सब, बहु पानी दे दे बेटे एक गिलास।
1: अरे पापा जी रुकिए ना, आपने मेरा ब्लॉग ही खराब कर दिया, बीच में बोल पड़े आप, रिटेक लेना पड़ेगा मुझे अब। शांत रहिए जरा।
0: बेटे क्या शांत रहूं,
1: गाइस मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ, पता नहीं कब शांति मिलेगी मुझे इस घर में।
0: अरे बेटा रमेश, रमेश बेटा तू ही दे दे एक गिलास पानी मुझे, खांसी बहुत उठ रही है बेटे, जा दवाई खा लूं।
2: हे भगवान, सत्यानाश हो जाएगा। अरे क्या हो गया दुनिया को?
0: अरे क्या हुआ बेटे रमेश, सब ठीक तो है? ये क्या बोल रहा है बेटे तू?
2: कहाँ ठीक है बाबूजी, देखिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जागरूक नागरिक में मैसेज आया है, कल से पूरे देश में नमक खत्म होने वाला है। समुद्री तूफान की वजह से नमक की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं बाबूजी, देखिए वीडियो।
0: हे भगवान क्या होगा।
3: अरे अरे सामने सामने सामने, जल्दी फायर करो। हाँ, लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से। अरे लेफ्ट से, अरे कवर करो यार, कवर करो जल्दी। अरे यार कवर करो, अरे क्या कर रहे हो? अरे यार ओहो, अरे यार हार गए हम। अरे तुम लोग भी ना, पूरा मैच खराब कर दिया तुमने।
0: ये क्या, हे राम कौन आ गया? अरे किसे मार रहा है रे तू? क्या हो गया रोहन तुझे?
3: अरे दादू आप बीच में मत बोलो, मेरा सारा गेम ओवर हो गया, आपकी वजह से सारा गेम ओवर हो गया मेरा। यार पापा इनको चुप कर लो, जीतते जीतते मैच हार गया मैं, पूरी मेहनत बेकार हो गई मेरी।
0: क्या जमाना आ गया है इस घर में, इस घर में सबकी नजर दुनिया पर है, लेकिन लेकिन अपने घर पर किसी की नहीं, सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। एक बहू है जो दुनिया को रसोई से नए नए व्यंजन बनाना सिखा रही है, मगर अपने बूढ़े ससुर को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती। ये बनाना सिखाएगी नए नए व्यंजन सबको। और मेरा एक बेटा है, ये बेटा जिसको मैंने इतने लाड प्यार से पाला, ये देश दुनिया की हर खबर पर बहस करता है, लेकिन लेकिन अपने बाप की खांसी की आवाज उसके कानों तक नहीं पड़ती। बाप को क्या हो रहा है, कुछ सी को कोई परवाह नहीं। और एक ये पोता, ये तो बस दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर दुश्मनों को हराने में लगा रहता है, पर अपने दादाजी के साथ 2 मिनट बैठने की, अरे 2 बातें करने की भी इसको फुर्सत नहीं है।
1: अरे पापा जी ये क्या किया आपने, कांच का ग्लास तोड़ दिया।
2: बाबूजी ध्यान कहाँ रहता है आपका, आप पानी खुद क्यों ले रहे थे?
0: अब क्या करूं बेटा, पिछले 15 मिनट से तुम तीनों को आवाज दे रहा था। लेकिन तुम लोग तो इस घर में होकर भी इस घर में थे ही नहीं। बेटे मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम सब उस छोटी सी स्क्रीन की दुनिया में कहीं खो गए हो। अब क्या कर सकता हूं बेटे, दवाई खानी थी, खांसी उठी थी तो पानी तो लेना ही था।
2: अरे बाबूजी आप भी ना, मैं कोई टाइम पास थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो देश की इकोनॉमी और बाजार की बड़ी बड़ी खबरें पढ़ रहा था। अभी अभी मोबाइल पर खबर आई है कि कल से नमक की भारी किल्लत होने वाली है। आपको पता है लोग अभी से नमक खरीदने के लिए दुकानों पर टूट पड़े हैं। पर बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लाला की दुकान पर जाता हूँ और 10-15 पैकेट नमक के लेकर आता हूँ, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि एक पैकेट भी ना मिले। देखिए आजकल जमाना बड़ा खराब है बाबूजी, खबर मिलते ही लोग जरूरत से ज्यादा सामान जमा करने लगते हैं।
0: हाँ जा बेटे जा ले आ।

0: अरे पापा, आप भी ना व्हाट्सएप पर आने वाली हर खबर को सच मान लेते हैं। आजकल अफवाहें भी खबर बनकर तेजी से फैल रही हैं। किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उनकी जांच तो कीजिए।
1: तू मुझे सिखाएगा? देख तो सही, इस मैसेज पर साफ लिखा है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये खबर कितने लोगों तक पहुंच चुकी है। और ये मुझे देखो, शर्मा जी ने भेजा है। शर्मा जी भला मुझे झूठी खबर क्यों भेजेंगे? मुझे तो पूरा यकीन है कि ये खबर 100% सही है।
2: अरे आप नमक छोड़िए, अभी अभी मेरे किट्टी पार्टी वाले ग्रुप में मैसेज आया है। हमारे इलाके में बच्चा चुराने वाला गिरोह आया हुआ है। वो लोग साधु के भेष में घूम रहे हैं। मैंने तो स्टेटस भी लगा दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टे सेफ गाइस।
0: अच्छा, और जो सुबह असली साधु महाराज चंदा मांगने आए थे, उन्हें तुमने 10 रुपए दिए थे और बड़े शौक से उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई थी, तो वो क्या था बेटा?
2: अरे बाबूजी, वो तो सुबह की बात थी ना, और तब तक ये मैसेज कहाँ आया था?
0: अच्छा बेटा, लो लो, पुलिस भी आ गई। पक्का नमक के लिए दंगे हो गए होंगे बाहर।
2: नहीं, पक्का वही बच्चा चोर पकड़े गए होंगे। रुको रुको, मैं अभी अपना ट्राइपॉड लेकर आती हूँ। आज तो पूरी घटना अपने इंस्टाग्राम चैनल पर लाइव करूंगी।
3: शर्मा जी, अरे आप लोग आराम से बैठे हो, बाहर देखिए क्या हो रहा है।
1: बाहर क्या हुआ वर्मा जी? नमक खत्म हो गया क्या? ये बच्चा चोर आ गए।
3: अरे रमेश जी, आप व्हाट्सएप में घुसे रहते हो। आप अपने घर के पीछे वाले बिजली के खंभे को तो देखो, उसमें आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, पूरे मोहल्ले की लाइट कटने वाली है और आग आपके घर की तरफ भी बढ़ रही है।
2: क्या आग? आग लग गई है बाहर?
0: अरे यार, ये लाइट चली गई। अरे पापा, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। अरे मेरा टूर्नामेंट चल रहा था।
1: अरे बेवकूफ लड़के, बाहर आग लगी है और तुझे वाईफाई की पड़ी है? मोबाइल की टॉर्च जला जल्दी।
2: मेरे तो फोन की बैटरी भी 2% ही बची है। मैंने पूरा दिन व्लॉग एडिट किया था ना, अब क्या होगा? रमेश, आप ऐसा कीजिए, फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए।
1: मेरे फोन को क्या हो गया? इसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ये व्हाट्सएप ने मेरा पूरा स्टोरेज ही भर दिया। फोन हैंग हो गया मेरा।
0: अरे बच्चों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब आग बुझ गई है बेटे। मैंने अभी अभी खिड़की से देखा है, पड़ोसियों ने मिट्टी और पानी डालकर आग बुझा दी है। फायर ब्रिगेड भी आ गई है बाहर। परेशान मत हो बेटे, परेशान मत हो।
1: चलो अच्छा है। हे भगवान, बाल बाल बच गए।
0: रमेश बेटा, आज तो भगवान की कृपा से आग से बच गए। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, असली बचाव उस दिन होगा जब मोबाइल की हर बात को सच मानना छोड़ दोगे, अफवाहों से दूर रहोगे और अपनी समझ से काम लेना सीख जाओगे।

0: आज तो देख लिया ना तुम लोगों ने, तुम्हारे उन हजार वर्चुअल दोस्तों में से कोई आग बुझाने आया क्या? नहीं आया ना। हमारे पड़ोसी ही तो काम आए। वर्मा जी बिना एक पल गंवाए दौड़े चले आए। और सुनीता बहू, तुम्हारे हजारों फॉलोवर्स में से किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे अपने घर के बाहर आग लगी है, क्योंकि उस समय सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे और तुम भी तो मोबाइल की दुनिया में खोई हुई थी। बेटा याद रखना, बेटा रिश्ते स्क्रीन पर नहीं जिंदगी में काम आते हैं। बेटा सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो हमें अपनों और आसपास की दुनिया से काट दे तो बेटा उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। आ गई ना तुम्हारी समझ में बात?
1: बाबूजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
0: और रमेश, तुझे देश के नमक की चिंता है ना बेटे? लेकिन तेरे अपने घर में तेरे बाप का गला सूख रहा था, वो तुझे नजर नहीं आया। और रोहन बेटा, तू तो गेम में लोगों को रिवाइव कर रहा है, पर असल जिंदगी में तेरे अपने रिश्ते मर रहे हैं। उनका क्या, अभी तू बहुत छोटा है बच्चे, इस गेम से बाहर आ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, ठीक है ना?
2: सॉरी दादू, ध्यान नहीं दिया।
0: गलती तुम्हारी नहीं है बच्चों, इस तकनीक ने हमें सुविधा दी थी ताकि हम दूर बैठे लोगों से जुड़ सकें। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने पास बैठे लोगों को ही दूर कर दिया। आज हमारे पास दुनिया भर की खबर है, सिवाय इसके कि हमारे बगल वाले कमरे में बैठा इंसान किस दर्द से गुजर रहा है।
3: मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बिना सच जाने हर खबर पर यकीन करता रहा और दूसरों तक पहुंचाता रहा। फेक न्यूज और सोशल मीडिया की इस अंधी दौड़ ने मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। लेकिन आज समझ आ गया कि हर वायरल मैसेज सच नहीं होता। अब से किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर परखूंगा।
1: और मैं भी अब से घर में फोन का इस्तेमाल कम करूंगी। बाबूजी मुझे नहीं चाहिए ऐसे फॉलोअर्स जिनकी वजह से मैं अपने परिवार को समय ना दे पाऊं। रुकिए मैं भी आपके लिए पानी लाती हूँ।
2: दादू कल से नो गेमिंग ड्यूरिंग फैमिली टाइम, अब से खाने के समय सिर्फ फैमिली टाइम, गेम बाद में।
0: चलो बेटे, इसी बहाने सब नेटवर्क के अंदर तो आए।

श्रोताओं, ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है जिसमें हम अपने रिश्तों को, अपने बुजुर्गों को कितना ही अपेक्षित कर रहे हैं शायद हम नहीं जान पा रहे, और इसके घातक परिणाम वो भी हमने जाने इस लघु नाटिका के माध्यम से। तो श्रोताओं, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है जिसमें हम अपने रिश्तों को संजो सकें और झूठ मूठ की अफवाहों से बच सकें। तो हमें नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए परंतु एक सीमित मात्रा में, जिससे हमारी जिंदगी प्रभावित ना हो और हम सामान्य जीवन जी पाए। श्रोताओं, लघु नाटिका नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आपने सुनी, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। और श्रोताओं, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और अब घड़ी की सुइयां हमसे कह रही हैं कि हम आपसे विदा लें अगले कार्यक्रम तक के लिए। आप हमें बताएं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। आप अपनी शिकायतें और सुझाव हमें भेजें इस पते पर, कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 2467। और इसी के साथ अपने साथी ज्योति को कार्यक्रम सम्पन्न करने की दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम परिवार जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय दिन की 1:45 और लीजिए पेश है लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे हिम्मत राम दुदरेजा के गाए गुजराती लोकगीत।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
0: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
1: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
0: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर हैं
1: 0134123015
0: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
1: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
0: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो बासमती।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा। और आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार हिम्मत राम दुदरेजा के गाए गुजराती लोकगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हिम्मत राम दुतरेजा के गाए गुजराती लोकगीत।

0: Do not allow this issue to be derailed. At this moment, the interests of the students must remain the top priority. The country's examination system needs meaningful reforms, and ensuring that examinations are conducted in a free, fair and transparent manner should be of the highest importance.
1: Meanwhile, the proceedings of both Houses of Parliament have resumed. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms, and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा.
1: The Supreme Court today agreed to hear tomorrow a batch of pleas alleging excessive use of police force against students protesting over the issue of examination paper leaks. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Jamalia Bagchi and V. Mohana also agreed to take up a separate plea filed by a few family members of police personnel who were attacked during the protest, along with other listed petitions. Chief Justice Surya Kant today observed that the right to peaceful and lawful protest is constitutionally protected. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, said he will assist the court. The court said it will see what the Nandan Nilekani-led high-power task force formed by the government suggests on the online conduct of the NET examination. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal till tomorrow as deep depression forms over Bay of Bengal. The Met Department also issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for the day. The weather agency further predicted heavy to very heavy rainfall over Delhi, Chandigarh, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh till tomorrow. IMD has advised fishermen not to venture into the northwest Bay of Bengal and along and off the coasts of Odisha, West Bengal and North Andhra Pradesh till Wednesday. A deep depression over the northwest Bay of Bengal has triggered widespread torrential rainfall across Odisha, disrupting normal life and raising concerns over flash floods and inundation. Several districts have recorded exceptionally heavy precipitation, with low-lying areas submerged and transport services affected. We have more from our correspondent.
3: A depression over the northwest Bay of Bengal has intensified into a deep depression, unleashing incessant and intense rainfall across large parts of Odisha. Extremely heavy precipitation has been reported from Jagatsinghpur, Sambalpur, Bhadrak, Jajpur, Kendrapada, Katak, Puri and Khurda districts, resulting in widespread waterlogging and disruption of normal life. Rising waters of the Mahanadi River have inundated the premises of the historic Bhattarika temple in Katak district, while Subarnapur district has witnessed extensive damage to standing paddy, vegetable crops and rural infrastructure. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In Assam, the flood situation has improved as flood waters have receded in most of the affected areas. More than 37,000 people are currently taking shelter in 109 relief camps set up across the worst affected districts of Sivasagar, Golaghat, Jorhat and Jaraidyo. Sivasagar alone has 66 relief camps housing over 30,000 inmates. Government agencies are working on a mission mode to distribute relief materials among the affected people in these districts. In Jammu and Kashmir, a fresh landslide today blocked the 250-kilometre strategic Jammu-Srinagar National Highway NH44 in the Udhampur district, while the main bridge in the Doda district was temporarily closed to vehicular movement after suspected cracks triggered a safety inspection. The National Highway Authority of India had deployed machinery to clear the debris and restore traffic at the earliest. However, a fresh batch of 3,823 Amarnath pilgrims was allowed to cross the affected stretch after authorities restored one-way traffic on the highway. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Global crude oil prices were trading around 6% lower today after the United States and Iran paused military strikes over the weekend. International benchmark Brent crude was trading 6.1% down at $90.87 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 5.8% down at $84.14 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices at home were trading around 1% higher during the afternoon session today amid easing geopolitical tensions and lower crude oil prices. The Sensex climbed 656 points to 76,716, while the Nifty rose 189 points to 23,956 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index surged over 1%, while the small-cap 100 index soared 1.2% a short while ago. The United Kashmir People's National Party, UKPNP, today called on the Pakistani authorities to exercise restraint and refrain from using force against peaceful protesters participating in the long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, from Rawalkot to Muzaffarabad in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The UKPNP said over 40 people lost their lives since June the 5th amid ongoing unrest in the occupied territory. The march came after talks between JAAC and Pakistani authorities failed to produce a mutually acceptable outcome, prompting a renewed call for public mobilization. The organization urged the United Nations, the European Union, the United States, the United Kingdom, Russia and the wider international community to actively support efforts aimed at protecting civilians and promoting a peaceful resolution of the dire situation in POJK. On the other hand, amid criticism over suppression of fundamental freedoms, the Legislative Assembly elections are currently underway in POJK. News just in, Rajya Sabha has been adjourned till 3 p.m. and Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. Today is the death anniversary of former president and renowned scientist Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India. Dr. Kalam is remembered as one of the greatest teachers ever. He played a pivotal role in India's defense and space research development. More from our correspondent.
4: Born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu, Dr. Kalam specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully injected the Rohini satellite in the near-Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. The former president was also responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th president of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecast heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता मनु भाकर को कांस्य पदक और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
6: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
5: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
5: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
8: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
5: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
8: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
5: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
9: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
5: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
10: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
5: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
11: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगी, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराइदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
12: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
5: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का उठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
13: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
5: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि

0: स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। समय अपराहन के 2:30 और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नई फिल्मों से में, और कार्यक्रम का ये पहला गीत सभी श्रोताओं के लिए हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की आवाजों में फिल्म है हमको दीवाना कर गए। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: हिमेश रेशमिया और तुलसी कुमार की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म हमको दीवाना कर गए का ये गीत, जिसमें संगीत था हिमेश रेशमिया का ही और इस गीत को लिखा था समीर ने।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत नई फिल्मों से में, और कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप सभी के लिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म है दम लगा के हईशा। गीत लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से, और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में। फिल्म है तमाशा, गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है ए आर रहमान का।

और श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं गजेंद्र वर्मा के संगीत निर्देशन में, गजेंद्र वर्मा की आवाज में ये गीत। फिल्म है टेबल नंबर 21, गीत लिखा है असीम अहमद अब्बासी ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत नई फिल्मों से। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म है जीनियस, गीत लिखा है कुमार ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है हार्टलेस, गीत लिखा है अराफात महमूद ने और संगीत दिया है गौरव दोगांकर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। अपराहन के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे संध्याकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे चर्चाएं करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में। तो आज इसी क्रम में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही आत्मनिर्भर भारत फंड और

क्रेडिट गारंटी योजना के विषय में चर्चाएं करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत यानी कि SRI फंड के विषय में। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुपालन में आत्मनिर्भर भारत फंड की स्थापना की गई है ताकि उन MSME में 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया जा सके जिनमें विकास करने और बड़े उद्यम बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस 50,000 करोड़ रुपए के फंड के तहत भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी वेंचर इक्विटी कैपिटल फंड्स के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। SRI फंड इक्विटी या अर्थ इक्विटी निवेश के लिए मदर फंड और डॉटर फंड संरचना के माध्यम से संचालित होता है। NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड जो SRI फंड के कार्यान्वयन में मदर फंड के रूप में कार्य करता है, इसको 1 सितंबर 2021 को SBI के साथ श्रेणी 2 विकल्प निवेश फंड के रूप में पंजीकृत किया गया था। SRI फंड का उद्देश्य इक्विटी निवेश के माध्यम से देश भर के लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। 2021 में इसकी स्थापना के बाद से SRI फंड के तहत MSME के लिए कुल इक्विटी निवेश 4,885 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें भारत सरकार का 529.40 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। भारत सरकार ने लघु और मध्यम क्षेत्र के लिए कई पहले की हैं, जिसमें MSME के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 27 जून 2023 को हुआ। बजट सत्र 2023-24 में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की गई, जिससे ऋण की लागत कम करके 2,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके। MSME प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों में MSME कार्यक्रमों के संस्थानों और शासन को मजबूत करना, MSME क्षेत्र की ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से फर्मों की क्षमताओं को बढ़ाना और विलंबित भुगतान की घटनाओं को कम करना है। तो ये तो बात हुई आत्मनिर्भर भारत फंड यानी कि SRI फंड के विषय में, और अब बात करते हैं क्रेडिट गारंटी योजना के विषय में। क्रेडिट गारंटी योजना विशेष रूप से CGTMSE स्कीम और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत भारत सरकार की एक पहल है जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्टार्टअप्स को बिना किसी गिरवी या तीसरे पक्ष की गारंटी के बैंकों से आसानी से लोन दिलाने में मदद करती है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे 10 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है। ऋण ना चुका पाने की स्थिति में सरकार द्वारा बैंकों को 75% से 90% तक का गारंटी कवरेज दिया जाता है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगों और आकांक्षी जिलों के उद्योगों के लिए उच्चतर गारंटी कवरेज 90% तक का प्रावधान है। नए और पुराने दोनों प्रकार के सूक्ष्म और लघु उद्यम इसके पात्र हैं। इसके लिए सीधे आवेदन नहीं करना होता, बल्कि सिडबी या मान्यता प्राप्त बैंकों NBFC से लोन के लिए आवेदन करना होता है, जो पात्रता पूरी होने पर इस योजना के तहत गारंटी कवर कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई इन योजनाओं के विषय में, और अब चलते चलते आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए गुमशुदा के संबंध में सूचना। श्रोताओं, कुमारी मोहिनी पुत्री पवन कुमार, निवासी ग्राम हुसैनपुर, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर, दिनांक 29 जून 2026 से अपने निवास स्थान से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनका रंग गोरा, लंबाई 5 फीट, बाल काले, नाक कान और आंख औसत है। इन्होंने काले रंग का पायजामा और सफेद रंग का चिट्टीदार कुर्ता पहना है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इन दूरभाष नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। 89588817695, 8630840101 और 9454403131। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है जानकारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में। संसद समीक्षा आज रात्रि 8 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 5:15 पर। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर। डॉक्टर अरविंद सिंह से सुवेंद्र सिंह की बातचीत का विषय होगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व। विविधाक्रम में आज शाम 6:45 पर श्रीमती मृदुला रानी की वार्ता का विषय होगा 21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास। छायागीत सुनिएगा आज शाम 6:55 पर। सुगम संगीत में आज शाम 7:32 पर अनीता शर्मा के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। आज रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत संध्या। एक ही फिल्म से कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आज रात्रि 8:30 पर। भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात्रि 10 बजे। आज रात्रि 10:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये थी जानकारी हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के विषय में और अब एक नज़र कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। स्कूलों में अखबार पढ़ने की अनिवार्यता विषय पर परिचर्चा आप सुनेंगे कल रात्रि 9:30 पर। इसमें प्रतिभाग करेंगे श्री एजाज अहमद, श्री सुनील कुमार और डॉक्टर निधि भारद्वाज। परिचर्चा का संचालन करेंगे अंकित सैनी। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदना, श्री रामचरित मानस गान की संगीतमय प्रस्तुति हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 6:30 पर। काव्यधारा क्रम में कल सवेरे 6:45 पर श्रीमती दीपिका माहेश्वरी का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुनिएगा कल सवेरे 7:31 पर। कल सवेरे 8:45 पर होंगे गोल्डन हिट्स और गीत तुम्हारे, ये कार्यक्रम सुनिएगा आप कल सवेरे 10 बजे। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर सत्यवीरा हांडा के गाए रुहिलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनिएगा कल दिन में 11:30 पर। कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए मिड डे मेलोडी, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल दोपहर 12:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आज की इस खूबसूरत सी शाम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अलीना।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफा जैदी।
0: दोस्तों, मेरी जिंदगी कोई आदर्श नहीं है, मगर मेरी कहानी गरीब और छोटी जगह पर रहने वाले बच्चों को हिम्मत दे सकती है। इससे उन्हें लगेगा कि गरीबी कठिनाइयों के बाद भी मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है।
1: ये लफ्ज थे एपीजे अब्दुल कलाम के। ऐसा लगता है उन्हें पता होगा कि उनके जाने के बाद उनकी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। जी, उनके जाने के बाद 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने पर उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया।
0: दफनाना, ये लफ्ज हिम्मत मांगता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: तो आज का ये दिन, ये सेगमेंट, ये लम्हे, ये सब कुछ सिर्फ कलाम साहब के लिए। बातें आगे भी होंगी।
0: तो दोस्तों, आज का दिन भले ही सोमवार है, मगर ये दिन हर इंसान के लिए जो कलाम साहब यानी जैनुल आबिदीन का आशिक है, फैन है, उनके लिए सोगवार है।
1: कौन नहीं जानता इस मिसाइल मैन की कहानी, जो पक्षियों को उड़ता देख पायलट बनने का ख्वाब देखता था।
0: ख्वाब ख्वाब वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, ख्वाब वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो दोस्तों, ये लाइंस कॉपी किताब पर छपे हुए आपने जरूर पढ़ा होगा,
1: है ना? आपने विंग्स ऑफ फायर भी पढ़ी होगी, तो फिर आपने ये भी जान लिया होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने।
0: और भारत के राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं बने, कलाम साहब वो खूबसूरत इत्र हैं जिनका जिक्र हो तो हवा में भी खुशबू महकने लगती है।
1: सन 1955, जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन किया।
0: 1950 में DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में मेन साइंटिस्ट रहे।
1: काबिलियत इतनी कि गिनते गिनते दिन गुजर जाए। तो ये था आज हमारा कुछ खास है, आज जो कि बेहद वाकई खास है।
0: बिल्कुल यूसुफा, तो अब बारी है हमारे सेगमेंट बुझो तो जाने की। एक कहानी दोस्तों हमने सुनाई, अब एक सवाल आपके लिए।
1: फिल्म पीके किस वर्ष रिलीज हुई, जल्दी से दीजिए इसका जवाब हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। और याद रखिए, आज का दिन कलाम साहब के नाम है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो दोस्तों, गपशप अड्डा में हम आपसे यही बातें करेंगे आज कि कौन है कलाम साहब और आपको किस चीज से उनकी इंस्पिरेशन मिलती है, क्या आप कौन सा कोट उनका हर वक्त अपने दिमाग में अपनी कॉपी पे छापे रहते हैं। तो ये तो हम आपसे सुनेंगे और पूछेंगे गपशप अड्डा के अंतर्गत। अभी फिलहाल हो चुका है एक और कहानी का वक्त। सेगमेंट का नाम है कहानी के उस पार और कहानी का नाम है दो कलाकार। एपिसोड नंबर है पहला और जिसे आपके सामने प्रेजेंट किया है अलीना मेहताब ने, तो सुनिएगा।
0: नमस्कार दोस्तों, कहते हैं हर कलाकार दुनिया को अपनी नजर से देखता है, लेकिन जब दो कलाकार एक ही दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखें तो कौन सही होता है? क्या कला सिर्फ सुंदर चित्र बनाने का नाम है, या किसी की जिंदगी को बेहतर बना देना भी एक कला है? तो दोस्तों, आज हम मनु भंडारी की कहानी दो कलाकार से शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ दो सहेलियों की कहानी नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच की कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक हॉस्टल का कमरा था, सुबह का समय था, सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि चित्रा ने अपनी सहेली अरुणा की चादर खींच ली। अरे रूनी, उठो, जल्दी उठो, मेरा चित्र पूरा हो गया। अरुणा गहरी नींद में थी, उसने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ चित्रा, इतनी सुबह क्यों जगा दिया? लेकिन चित्रा तो बहुत ज्यादा खुश थी। वो अरुणा का हाथ पकड़कर उसे अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले गई और बोली, देखो आखिर मेरा चित्र पूरा हो ही गया। अरुणा ने पहले जमाई ली, फिर ध्यान से चित्र देखने लगी। उसने एक मिनट देखा, दो मिनट देखा, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो मुस्कुराकर बोली, सच कहूं चित्रा, मुझे इसमें सड़क भी दिख रही है, आदमी भी, बस भी और मकान भी, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुमने दिखाना क्या चाहा है। तो चित्रा को थोड़ा सा तो बुरा लगा कि अरुणा ने इस तरह से क्यों कह दिया। वो बोली, अरे जरा ध्यान से देखो, अगर इस चित्र को पहला पुरस्कार नहीं मिला ना तो मेरा नाम बदल देना। अरुणा ने फिर से देखा, लेकिन इस बार भी वही बात कही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की चीजें एक साथ इस कैनवास पर दिख रही हूं। चित्रा हंसते हुए बोली, तुम समझी नहीं, ये आज की दुनिया है, उलझनों का प्रतीक है। अरुणा ने भी हंसकर कहा, मुझे तो ये दुनिया की नहीं तुम्हारे दिमाग की उलझन लग रही है। दोनों हंस पड़ी, लेकिन इस छोटी सी बात में दोनों की सोच का अंतर साफ दिखाई देता था। चित्रा के लिए कला का मतलब ऐसा चित्र बनाना जिसे लोग देखें, समझें और उसकी तारीफ करें। वहीं अरुणा की सोच बिल्कुल अलग थी। थोड़ी देर बाद अरुणा कमरे से बाहर आ गई और वापस आई तो बस्ती के तीन चार छोटे बच्चे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही अरुणा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, आ गए तुम लोग, चलो आज पढ़ाई शुरू करते हैं। चित्रा ने बच्चों को देखकर मजाक में कहा, लगता है तुमने इन बच्चों की पूरी टोली बना ली। अरुणा मुस्कुराई और बोली, नहीं चित्रा, ये वो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं बस थोड़ा समय इनके साथ बिताती हूँ, अगर ये पढ़ लिख जाएं तो शायद इनका फ्यूचर बदल जाए। चित्रा मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसे ये लगा ये सब समय की बर्बादी है, लेकिन अरुणा के लिए किसी बच्चे के चेहरे की मुस्कान किसी भी पेंटिंग से ज्यादा कीमती थी। यहीं से दोस्तों इन दोनों कलाकारों की कहानी शुरू होती है। एक कलाकार कैनवास पर रंग भर रही थी और दूसरी लोगों की जिंदगी में। दो दोस्तों, आगे कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां दोनों की सोच की असली परीक्षा होगी। तब पता चलेगा कि कला की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, बाकी की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
5: ओए मुनमुन, क्या कर रहा है? अरे भाई कुछ नहीं, तू बता। अच्छा ये बता, आज मैं तुझे कैसा लग रहा हूँ? अरे वही सोचूं, तू आज मुझे बदला बदला सा क्यों लग रहा है ना? लग रहा हूँ ना एकदम सलमान खान। सलमान खान तो लग रहा है, लेकिन तेरे नाम वाला। पर मेरे बाल तो छोटे हैं इतने। अरे वही तो कह रहा हूँ, तूने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवा लिए? भाई मुनमुन, बात है ऐसी, नाई के पास गया था मैं, तो उसके पास 3 रुपए खुले नहीं थे। मैंने बोला 3 रुपए के और बाल काट दे।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कि हम आपको रूबरू करा दें हमारे सेगमेंट गपशप अड्डा से, जिसके लिए हमारा नंबर है 9457078288। हमें कॉल कीजिए और बताइए क्या आखिर आपके लिए क्या है कलाम साहब।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: हेलो जी, किस लिसनर से बात हो रही है?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: राकेश जी, कैसे हैं आप?
4: जी बढ़िया है, बहुत अच्छे।
3: बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा जानकर कि आप बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पर। तो राकेश जी, जैसे कि हमने बताया ही था कि आज हम कलाम साहब के बारे में आपसे बात करेंगे, तो थोड़ा सा अपनी फरमाइश से पहले आप इसका जवाब दीजिएगा कि कलाम साहब के बारे में आप क्या जानते हैं।
4: जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलाम साहब जो है, और पहले जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने कई मिसाइलों का जो है परीक्षण भी किया था।
3: जी,
4: और जब 2002 में वो भारत के जो है 11वें जो राष्ट्रपति बने हैं
3: जी।
4: तो लेकिन अब जो कलाम साहब जब एक शिक्षा देते थे कि सपनों के बारे में,
3: बिल्कुल
4: सपने वो नहीं है जो कि हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हम उसको कर गुजर सकते हैं।
3: जी जी जी,
4: वो उनकी बात ये जो है युवा को प्रेरणादायक बात कि सपने अगर जो हम नींद में देखते हैं ख्वाब, वो सपने का भी पूरा नहीं, लेकिन सपने को अगर हम देखना है तो हमें उस अगर अपनी मेहनत हम पूरी करेंगे तभी हम अपने सपनों को पूरा देख पाएंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रेरणा हमें हम लोगों को दी है और हम लोगों के लिए इतना कुछ छोड़कर गए हैं, तो इसीलिए हम लोगों पे उनकी अच्छाइयों का इतना असर अभी तक बाकी है और आगे भी रहेगा। तो
4: जी बिल्कुल
3: राकेश जी,
4: हमारे जो कलाम साहब हैं, जो हमारे भले ही हमारे बीच में रहे, लेकिन जो उनकी जो है प्रेरणादायक बातें हैं हमारे जीवन में
3: वो है अभी भी,
4: और अभी भी है। जी।
3: बहुत अच्छा लगा कि इतना कुछ आप उनके बारे में जानते हैं और उनको याद रखते हैं। तो जैसे कि आज हमारा प्रोग्राम आपको पता ही है क्यों स्पेशल रहता है, तो आप ये बताइए आज के आपकी फरमाइशी गीत कौन सा रहेगा?
4: तो जैसे कि मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मुझे अब यह ध्यान आया, तो पर मैं श्रद्धांजलि वाला गीत में जरूर चला था, लेकिन अब मुझे जो गाना आपको मैंने बताया था सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे, वही चला दो।
3: तो चलिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।
4: जी जी, धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज। और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग सिर्फ आदमियों को क्यों मिलता है, महिलाओं को क्यों नहीं मिलता? कोई जिन होता जो हमारा भी हाथ बटा देता, हमारे हिस्से के बर्तन धो देता और कपड़े धो देता, थोड़ा आराम मिल जाता हमें।
3: बच्चा, नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन मिल सकता है, और हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तुम्हारे जिन मिल चुका है, उसे अभी अभी तुमने सब्जी मंडी भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारी साड़ी लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, फिर काम पर जाएगा वो मिने जिन, यानी तुम्हारा पति थोड़ा टाइम खाऊ जरूर है, मगर चिराग वाले जिन से कई ज्यादा बेहतर है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
5: हेलो हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क गायब हो गए हैं जनाब के, तो मेरे ख्याल से उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। चलो अलीना, उनकी बात हम ही रख लेते हैं, जो भी हमारे जनाब हमसे जुड़े थे उनसे हमारा यही सवाल होता कि आखिर आपके लिए कमाल साहब इतने, कलाम साहब इतने कमाल के क्यों हैं, क्या चीज उनकी आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है और आप अपने दिल में उस चीज को उतार चुके हैं। तो मेरे ख्याल से उनका जवाब यही होता कि उन्होंने सिखाया है कि सपने देखो और सपने देखने के बाद फिर जुनून रखो कि उन्हें पूरा भी कर सको। तो मेरे ख्याल से अब वो तो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमने उनसे जुड़ा हुआ सवाल अपने आप से ही, अपने आप ही कर लिया और अपने आप ही जवाब दे दिया। तो इसी बात पर एक खूबसूरत सा गीत जो भी हमारे रिश्ते हमसे जुड़े हैं उनके लिए पेश है।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आवाज आ रही है आपको?
1: हाँ जी, आ रही है मैम। नमस्कार,
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी, किस लिसनर से बात हो रही है?
1: मैं ग्राम गादरौना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ जी।
0: जी, मदन गिरी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल।
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: हाँ जी,
0: तो मदन गिरी, जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सा आप ये बताइए, क्योंकि उनके बारे में तो हर कोई जानता है, आप भी जरूर जानते होंगे, थोड़ा ये बताइए, जितने अच्छे वो इंसान थे, तो उनकी अच्छाइयों का आज के लोगों पर, ठीक है, और आप पर क्या असर पड़ा?
1: देखिए मैं बताना चाहूंगा कि वो एक महान वैज्ञानिक होते हुए, महान वैज्ञानिक थे, लेकिन
0: जी
1: वो एक शिक्षाविद भी थे,
0: जी जी
1: और उन्होंने जो बच्चों को उनकी आदत थी बच्चों को जो है शिक्षा देने की,
0: जी जी जी जी
1: ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति
0: जी
1: का मेरे जो है बहुत ही प्रभाव पड़ा उनका, और मैं प्रेरणा ली, और बहुत ही प्रेरणा ली उनसे कि
0: जी
1: ऐसे देशभक्त से प्रेरणा ही लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और देश
0: बिल्कुल
1: के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य का जैसे निर्वहन किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो शब्द
0: कम
1: कम
0: है
1: पड़ते हैं।
0: जी, वो इंसान ही इतने अच्छे थे कि हम तारीफ कितनी भी करें कम ही पड़ जाएगी।
1: हाँ जी
0: बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा असर उनकी अच्छाइयों का आपके ऊपर पड़ा। तो जैसे कि आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम रहता है कि हम आपसे आपका फरमाइशी गीत जानेंगे, तो आप बताइए कि आपका आज का फरमाइशी गीत कौन सा है?
1: यादगार फिल्म है,
0: जी
1: और लता मंगेशकर की आवाज है, और गीत के बोल हैं, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आचम तो बिछाने दे।
0: तो चलिए सुन लेते हैं आपकी
1: दो
0: फरमाइश
1: दो
0: पर।
1: चार नाम लेना चाहूंगा जी
0: जी,
1: मित्रों के।
0: बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए।
1: आचार्य सत्यवीर सिंह चौहान है, आसिफ चौधरी जी हैं,
0: जी
1: राशिद अंसारी जी हैं,
0: जी
1: और प्रकाश चंद जी हैं, और अमित धीमान जी हैं।
0: तो चलिए आपको और आपके साथियों को सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
1: जिस पथ पे चला

0: दोस्तों, हमने पूछा था आपसे एक सवाल। सवाल था बूझू तो जाने सेगमेंट का कि बॉलीवुड फिल्म पीके किस वर्ष रिलीज हुई थी, जिसका सही जवाब है।
1: तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि पीके फिल्म 19 दिसंबर 2014 में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब जान लेते हैं सही जवाब देने वालों के नाम, जो कि हैं विष्णु टेलर, दोमेंद्र नेतम, वीरेंद्र भयान, जॉन डी कैस्ट्रो, पुनाजी नावकर, मोहम्मद आमिर अंसारी, बी कमल, भागवत चौबे लाडला जी, जीतू, गंगा सिंह रावत, सुदर्शन शाह, मोहम्मद रफीक पवार, नानक खन्ना, दिनेश वर्मा, हीरामणि वर्मा, अबाद खान, दिगर्शन गौड़, बबलेश पंवार, धर्मेंद्र छीपा, जगदीश धाकर और है आफ्ताब अंसारी, दानिश सिद्दीकी, महाराज कीर्तनपुरी, राजू मिगलानी, राम कुमार रेवर, सुरेश मलोड़े, बी आई धाकर, निसार सलमानी, गुरमीत सिंह मीता, आर्यन राज, मसरूर हसन, खिलाश फुलमाली, इरशाद अहमद, नवी हसन अब्बासी, पागुराम यादव, हीमकेश्वर साहू, हुकुम कमारकर, अरविंद कुमार, गजानन येले, नंदन कुमार सिंह, नरेन नेतम, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान, बलवंत कुमार, संजय धिंगिया और है रवि कुमार, महेंद्र मोदी, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद अफजाल ताज, देवशंकर तामूरिया, मिसबा शमसी, मोहम्मद हसनैन पवार, नदीम बाकी, शकील अहमद, खिल्लू परवेज, अनिल बी गोड़के, जयपाल यादव, शाहजी बोड़के, जाकिर मंसूरी, मोहम्मद सईद अब्बासी, विजय सुरलकर, ताज अंसारी, अभिजीत नवाबुद्दीन, भुवन प्रकाश, सदाशिव थोरात, सत्येंद्र चंसौलिया, सुरेश गगनेजा, शाहरुन नूर अंसारी, अनिल विनोचा, मुकेश कश्यप, रतनदीप आर्या, रेहाना खान।
0: तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे अगले लिसनर कौन है और किन की लगी है कॉल। हेलो।
2: हाँ जी, हेलो फ्रेंड।
0: हेलो, कैसे हैं आप?
2: बस अच्छे हैं मैम, आपको फोन लगा लिया, आज वक्त मिला तो, टाइम मिला तो फोन लगा लिया, अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। तो फिर जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा है, यानी कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हमने कह दिया था कि आज हम सिर्फ बातें करेंगे तो कलाम साहब के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो आप उनको किस लिए जानते हैं?
2: देखिए, वो हमारे देश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे स्कूल हुआ, और बहुत काम किए हैं जो कि इस टाइम पर जहन पे नहीं आ पा रहा है याद
0: जी।
2: और मैं अपना परिचय देना चाहता था मैम।
0: जी जी, बताइए।
2: जिला अमरोहा, नई बस्ती, पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहा था मैम।
0: जी बहारुल जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है गपशप अड्डा, जो कि इसीलिए खास बनाया गया है कि हम अपने लिसनर की फरमाइश पूरी कर सकें। तो फिर आपकी क्या फरमाइश होगी?
2: हाँ, जहाँ तक पसंद का सवाल है, फिल्म का नाम रहेगा हम आपके दिल में रहते हैं, उसका टाइटल सॉन्ग सुनवा देना और कुछ नाम दे घर के।
0: जी जी, बताइए, आप सारे नाम बता दीजिए।
2: जैसे थाना टीन मोहल्ले से इरफान खान, थाना टीन मोहल्ले से इकराम प्रेमी
0: जी।
2: और इसके अलावा मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटी अलीसा सिद्दीकी, शिपान सिद्दीकी, नाबिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, महेशपुर खेम से इकराम प्रेमी साहब, रामपुर से नवाबदीन भाई, रामपुर से दूलापुर मुर्दाबाद से मुकेश कश्यप जी हैं, राशिद अंसारी साहब।
0: जी जी, तो आपने जो एक लाइन में सारे अपने दोस्तों को बांध दिया है, ये अंदाज आपका हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यही जोश जो है कलाम साहब ने हर किसी में पैदा किया है कि वो भी यही चाहते थे कि हर इंसान अपना ख्वाब पूरा करे। उन्होंने भी ऐसे ही नहीं, उन्हें मिसाइल मैन कहा गया, जैसे कि आपने एक लाइन में पूरे अपने दोस्तों के सारे नाम पढ़ दिए है ना, तो उन्होंने भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए ऐसे ही एक लाइन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं।
2: हाँ देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मेरे पास लिखे हुए नाम नहीं थे, सिर्फ ये मुजवानी नाम थे, वो मैंने आपको बता
0: जी जी जी जी। तो चलिए फिर आपकी फरमाइश पर सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो दोस्तों, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि गपशप अड्डा का वक्त अब हमारा खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288।
1: आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी नजीबाबाद। तो खूब सारा प्यार दीजिएगा और हमारे प्ले कहानियाँ आपको कैसे लग रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट आपको कैसे लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और यूसुफा जैदी
0: और अलीना को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। किसान भाइयों, क्या हाल चाल हैं आपके? भैया देखिए, आपके हाल चाल बढ़िया होंगे, आपका काम धाम भी बढ़िया चल रहा होगा। और भाई देखिए, इस समय मौसम आप देख ही रहेंगी, बरसात का मौसम है और दो दिन से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। तो भैया, उमस भरी गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आप तो जानते ही हैं। और ऐसी उमस भरी गर्मी में हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कुछ जहरीले जंतु, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा खेत हो, तो कुछ जहरीले जंतु इस उमस भरी गर्मी में जमीन से ऊपर आ जाते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि सांप है, बिच्छू है और अन्य कुछ जंतु होते हैं, तो इनसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए और भैया अपने पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सांप वगैरह हमारे पशुओं को काट लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि ज़्यादा कहीं बिल वगैरह ना हो, उनको बंद कर दीजिए, या कहीं दीवार में दरार वगैरह ना हो, तो ऐसी व्यवस्था रखिए और प्रकाश की व्यवस्था रखिए रात में, ताकि सांप और बिच्छू जैसे जंतुओं से बचा जा सके। और भैया, अब यदि हम बात कर लें खेती किसानी की, तो हमारे किसान भाई वर्षा के इंतजार में हैं और कहीं कहीं आज वर्षा भी हुई है। तो किसान भाई, जहाँ पर वर्षा नहीं हुई वहाँ पर सिंचाई भी हमने करते देखे हैं, चाहे गन्ने की फसल हो या धान की फसल हो। तो भाई, जब वर्षा को ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती है, और हमारे किसान भाइयों ने अभी धान की फसल की जो रोपाई है वो भी लगभग लगभग पूरी कर ली है। तो उनकी धान की फसल में भी कुछ इस समय हमें ध्यान करने की आवश्यकता होती है। और धान की फसल की यदि हम बात करें, तो धान की फसल में जब हम रोपाई करते हैं तो उसके 15 दिन बाद हमें कभी कभी धान की फसल में खैरा रोग दिखाई देता है। तो भाई, इस धान की रोपाई जो है आपने लगभग पूरी कर ली होगी, इसमें खाद और उर्वरकों की मात्रा हमारे किसान भाइयों ने गोबर की खाद, हरी खाद व कंपोस्ट की खाद और DAP तथा पोटास से जो रोपाई के समय आपने दे दी होगी, जिसमें फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा हमारे किसान भाई जानते हैं कि रोपाई के समय ही दी जाती है। और साथियों, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, जो 1/3 भाग होता है, वो हम रोपाई के समय करते हैं, और लगभग 15 से 20 दिन बाद 1/3 जो हमारे नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो हम 20 दिन के बाद हम उसको पूर्ति करते हैं, और शेष जो 1/3 है वो गर्भावस्था से थोड़ी सी पहले, 10 दिन पहले हम इस्तेमाल करते हैं। और भाई, टॉप ड्रेसिंग के रूप में ही हम दो बार इसको इस्तेमाल करते हैं रोपाई के बाद। और भाई, धान की रोपाई के लगभग जब 15 दिन बाद खेत में कभी कभी आप देखते होंगे कि जिन खेतों में जिंक की कमी होती है उनमें जो पोषक तत्व है जिंक, उसकी कमी हो जाती है, तो धान पर खैरा रोग प्रदर्शित होता है, यानी कि हमें धान की फसल में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसमें पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं और धान में भूरे बैंगनी रंग के धब्बे नजर आने लगते हैं, जिससे फसल की पैदावार को प्रभावित हो जाती है। इसे दूर करने के लिए हमारे किसान भाई अपनी धान की फसल में प्रति एकड़ 7 से 8 किलोग्राम जिंक सल्फेट को यूरिया में मिलाकर बुरकाव करें, तो इससे धान की फसल में जिंक की पूर्ति हो जाती है और खैरा रोग भी दूर हो जाता है। साथियों, इसके बाद अपनी धान की फसल में समय समय पर आप सिंचाई करके उचित नमी बनाए रखें और खरपतवारों का नियंत्रण रखें। इसके बाद किसान भाइयों, इसके साथ साथ ही जो रोपाई के 15 दिन बाद अपनी फसल में एक लंबा जो आप बांस लेकर दोनों किनारों पर उसके रस्सी बांध लें, और भैया एक एक छोर पर जो एक एक आदमी हो जाए, यानी कि दोनों छोरों पर एक उधर और एक उधर दो आदमी इस बांस में जो रस्सी बंधी हुई होती है उसको पाटे की तरह अपने पूरे खेत में धान की फसल पर चला दें, तो इससे हमारी फसल में कल्ले काफ़ी मात्रा में फूटते हैं, क्योंकि जब हमारी जो फसल है वो गांठ के ऊपर से इधर उधर होगी तो वहां से कल्ले फूटेंगे और हमारी पैदावार बढ़ेगी। तो हमारे किसान भाई, यदि खेत में पौधों पर दीमक का प्रकोप देखें तो सिंचाई के जल के साथ किसान भाइयों क्लोरोपाइरीफास आधा लीटर यानी कि 500 मिलीलीटर की मात्रा को प्रति एकड़ प्रयोग करें, और दीमक का प्रकोप होने पर ध्यान से ये बात ध्यान रखें कि जो पौधे सूखने लगते हैं यदि उनको हाथ से जरा सा भी ऊपर सहारा दे दें या खींचें तो वो जमीन से ऊपर तुरंत खींच जाते हैं और इससे जो है हमारी फसल को भारी नुकसान होता है। तो ऐसे सूखे हुए पौधे हमें दूर से ही शुरू शुरू में नजर आ जाते हैं, तो जैसे ही हमें एक दो हमारा धान का पौधा या मेढ़ा दिखाई दे इस तरह से, तो हम जो है इसका नियंत्रण क्लोरोपाइरीफास से कर लें सिंचाई के जल के साथ, तो इससे दीमक का जो नुकसान है वो बंद हो जाएगा। और साथ साथ में खरपतवारों का नियंत्रण भी हमारे किसान भाई रखें, इसके लिए कुछ किसान भाई खुरपी या हाथ से भी उखाड़कर खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो इससे अच्छा भी रहता है क्योंकि हमारी फसल पर रसायनों का कुप्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो भाई जब बड़ा क्षेत्र होता है तो रासायनिक नियंत्रण ही हमें करना पड़ता है खरपतवारों का, और यदि हम खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण करें तो ब्यूटाक्लोर एक्वाक्लोर जैसी दवाई का प्रयोग करके और या छिड़काव करके खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इससे खेतों में एक तरह से काई जैसी जम जाती है और खरपतवार जो है ऊपर को उग नहीं आते हैं, तो इससे खरपतवारों का इस प्रकार पूरा नियंत्रण हो जाता है और हमारी पैदावार अच्छी होती है। तो भाई धान की फसल में हमारे किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और भैया अब हमारा ध्यान आता है यहाँ पर एक छोटा विराम लेने का, तो भैया आइए लेते हैं छोटा सा विराम और सुन लेते हैं ये कुछ जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
1: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
2: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
1: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
2: 0134123015
1: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
2: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
1: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
2: सजीव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो बासमती।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो अभी भाइयों ने सुने जरूरी संदेश, और भैया संदेश के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है, और मैं हूं आज आपके साथ आपका भैया नरेश पाल सिंह। तो भैया देखिए, अब हम खेती और पशुपालन की ओर अपने कार्यक्रम का रुख करते हैं। तो भाई देखिए, हम खेती बाड़ी की बात तो कर रहे थे, और खेती का दूसरा पूरक व्यवसाय होता है पशुपालन। चाहे हमारे किसान भाई कितने ही बड़े हों या कितने ही छोटे जोत वाले हों, भैया यदि उनके घर पशु नहीं है खेती के साथ साथ, तो उनकी खेती अधूरी मानी जाती है। तो हमें अपने पशु जिनके पास होते हैं, तो भैया उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और पशु जब हमारे पास होते ही हैं, तो हम पूरी तन्मयता, पूरे लगन और पूरा जो उनका पौष्टिक चारा दाना है, यदि उनको पूरा हम पौष्टिक चारा दाना खिलाएंगे, तभी पशु रखने का मजा है, और तभी अच्छा वो हमें उत्पादन देंगे। चाहे वो दूध उत्पादन हो, बोझा ढोने का हमारा काम हो, या पशु की कार्य क्षमता हो। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई अपने पशुओं को स्वस्थ रखें। और पशुओं को स्वस्थ रखने में एक प्रक्रिया और होती है, जिसका नाम है टीकाकरण। तो हमारे पशुपालक भाई समय समय पर विभिन्न बीमारियों का जो टीका है वो अपने पशु को अवश्य लगाएं। जैसे बरसात से पहले पहले हमारे किसान भाई गलघोंटू और लंगड़ी बुखार का जो टीका है वो लगा सकते हैं। और जो FMD होता है, वर्ष में ये टीका लगता है 2 बार। और जो हमारा गलघोंटू और जो लंगड़ी बुखार का टीका होता है, तो भैया वो लगता है 1 बार। तो वर्ष में एक तो मार्च अप्रैल में ये जो FMD यानी के खुरपका और मुंह पका रोग होता है, जिसमें आप अच्छी तरह जानते हैं पशुओं की लार टपकती है गाय भैंस की, और ये रोग जो है हमारी भेड़ बकरियों में होता है, जिसको हम खुरपका मुंह पका की जगह PPR के नाम से जानते हैं। और भाई इसी प्रकार सुकरों में भी ये रोग हो जाता है। और दूसरा जो 6 महीने बाद टीका लगता है, वो लगता है अगस्त सितंबर में। तो इन बातों का ध्यान रखें। और आज हम अपने कार्यक्रम में एक जानकारी इसी के संदर्भ में लेकर आए हैं, जिसका विषय है पशुओं में टीकाकरण का महत्व। और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद सिंह, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से हमारे बीच में आए हैं, और वहाँ पर जो पशुपालन चिकित्सा है उस पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो भैया आइए सुनते हैं उनके द्वारा दी गई ये जानकारी। और भैया आपसे बातचीत कर रहे हैं, यानी कि जानकारी ले रहे हैं हमारे भैया सुमेंद्र सिंह। तो भैया ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं ये बातचीत।
3: किसान भाइयों, हम सभी पशुपालन करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट रहें और उनमें कोई बीमारी ना हो। तो किसान भाइयों, इसके लिए पशुओं में टीकाकरण का होना बहुत ही जरूरी है। टीके लगवाने हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो पशुओं में टीकाकरण का महत्व और उपयोगिता, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद सिंह, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु औषधि विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में। तो राघ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद सुमेंद्र जी।
3: तो देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो पशुओं में टीके लगते हैं, तो इन टीकों का क्या महत्व होता है, ये क्यों जरूरी होते हैं हमारे पशुओं के लिए?
4: बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुमेंद्र जी। मैं सबसे पहले अपने पशुपालक भाइयों को नमस्कार करता हूँ
3: जी।
4: और मैं जो आपने अभी प्रश्न किया है कि टीका एवं टीकाकरण का महत्व क्या है
3: जी,
4: ये बहुत जरूरी है। जो भी हमारे पशुपालक पशु पाल रहे हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी सूकर हो, अगर जब तक हम सही से उनका टीकाकरण नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे।
3: अच्छा,
4: तो इस सब के लिए, उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जब हो जाती हैं तो पशु की हानि होती है, तो उन सबको बचाने के लिए हमें टीकाकरण बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ हमें कब करना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारियां मैं आपको आज अपने माध्यम से बताना चाहूंगा
3: जी,
4: आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले कि पशुपालन केवल दूध, मांस, ऊन और अन्य उत्पादों का स्रोत ही नहीं है
3: जी,
4: बल्कि लाखों किसानों और ग्रामीण परिवारों की आजीविका का आधार भी है। पशुओं का स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा उत्पादन उतना अधिक होगा
3: जी,
4: और किसानों की आय भी बेहतर होगी।
3: बिल्कुल।
4: लेकिन विभिन्न संक्रामक रोग पशुधन उत्पादन के सामने एक बड़ी चुनौती इस समय बन के उभरी है। ऐसे में टीकाकरण पशुओं को रोगों से बचाने का सबसे प्रभावी, सुरक्षित और आर्थिक उपाय माना जाता है। टीकाकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये रोग होने से पहले ही सुरक्षा प्रदान करता है। भाई, होता क्या है कि बीमारी हो गई, हमें इलाज कराना है, इलाज पे इतना ज्यादा खर्चा होगा, अगर हम उसको पहले ही बचा लें, और टीका की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट की तरफ से सब टीके फ्री में ही लगवाए जाते हैं
3: जी।
4: और होता क्या है, उपचार पर खर्च बहुत ज्यादा होता है, उस सबसे बचने के लिए हमें क्या कराना है, टीकाकरण कराना है। एक बार पशु की प्रतिरक्षा क्षमता अगर विकसित हो गई, विकसित किससे होगी, टीके से होगी
3: जी,
4: तो वह लंबे समय तक संक्रमण से सुरक्षित रख सकता है पशु को। इससे न केवल रोग की संभावना कम होती है, बल्कि रोग के फैलाव की श्रृंखला भी टूटती है।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि टीके किस तरीके से हमारे पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और पशुओं में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करते हैं। अब बात यह आती है डॉक्टर साहब कि टीका यानी कि वैक्सीनेशन ये क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और कैसे टीका लगवाने से हमारे पशु स्वस्थ हो जाते हैं, तो इस बारे में हम जानना चाहते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी हमारे पशुपालक भाइयों को जानना बहुत जरूरी है
3: जी
4: कि वैक्सीन होती क्या है।
3: बिल्कुल।
4: पता है क्या धारणा बनी हुई है जो हमारे पशुपालक भाई हैं गांव में, क्या होता है कि टीका टीका लगाने से जो है पशुओं में दूध कम हो जाता है या उनमें जो है बांझपन आ जाता है
3: जी।
4: ठीक है, ये धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं टीका के बारे में ही बताऊंगा कि एक्चुअल में टीका होता क्या है
3: जी।
4: टीका या वैक्सीन एक जैविक तैयारी होती है जो पशु के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी विशेष रोगजनक के विरुद्ध सुरक्षा विकसित करती है। जैसे अगर FMD है, खुरपका मुंहपका है, तो उसके खिलाफ, गलघोटू है तो उसके खिलाफ, ठीक है, लंगड़ी है तो लंगड़ी बुखार आता है उसके खिलाफ। तो अगर हम टीका पहले ही लगेगा, जो कि अभी बात चल रही है कि ये होता क्या है, तो ये उसके खिलाफ, उस बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है।
3: अच्छा।
4: इसके साथ ही साथ अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो टीका शरीर को पहले से रोग से लड़ने के लिए तैयार कर देता है, ताकि भविष्य में रोग का संक्रमण होने पर पशु गंभीर रूप से बीमार ना हो। टीकाकरण आधुनिक पशुपालन का आधार है और ये पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की सबसे सफल रणनीतियों में से एक माना जाता है। पुराने समय में पशुओं में संक्रामक रोगों के कारण भारी आर्थिक हानि होती थी, कई बार पूरे गांव या क्षेत्र में पशु प्रभावित हो जाते थे, जिससे दुग्ध उत्पादन कम हो जाता था और साथ ही साथ मृत्यु दर बढ़ जाती थी और पशुपालकों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता था। यदि मैं आज वैज्ञानिक उसकी बात करूं तो वैज्ञानिक अनुसंधानों और टीकों के विकास के कारण आज इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण संभव हुआ है। इसलिए टीकाकरण को केवल बीमारी से बचाव नहीं, बल्कि पशुधन विकास और खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।
3: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि टीका बहुत ही जरूरी है और टीका पशु सुरक्षा का मुख्य आधार है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब बात यह आती है कि हमारे किसान भाइयों को टीके लगवाने हैं और बरसात का समय चल रहा है और जैसे कि हमारे भाइयों ने गाय, भैंस, भेड़ बकरी और सूकर जैसे पशु पाल रखे हैं, तो डॉक्टर साहब, इस समय बरसात का मौसम है, हमारे पशुओं को कौन कौन से टीके लगने चाहिए डॉक्टर साहब?
4: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है सुवन जी आपने
3: जी,
4: क्योंकि पशुपालकों को ये जानकारी ही नहीं होती है कि हमें टीका किसका लगवाना है। कभी कभी क्या होता है, गांव में टीम जाती है पशुपालन की तरफ से, तो उसमें भी जनरली क्या होता है कि अगर घर में हमारे पुरुष नहीं है
3: जी,
4: तो महिलाएं डरती हैं कि वो नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे, या हमारा, हमने पहले लगवाए थे तो दूध कम हुआ था। ऐसा नहीं है, वो एक आध बार ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन टीके के बारे में मैं पहले ही बता चुका कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे उसका दुग्ध उत्पादन कम हो या उसमें बांझपन आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले जो हमारे पशु हैं गाय भैंस उसके बारे में बताऊंगा, फिर भेड़ बकरी और हम सूकर की भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पशुपालक भाई आजकल हर चीज को पाल रहे हैं।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: हर चीज से मुनाफा ले रहे हैं। तो अगर मैं गाय भैंस की बात करें तो भारत में दुग्ध उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं पशुओं पर निर्भर करता है, गाय भैंस पे। इसके साथ साथ मैं उसकी भी बात करूंगा कि अच्छी नस्ल के पशु पालने चाहिए, तभी हम उत्पादन ले पाएंगे। दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में संक्रामक रोग सीधे आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। गाय और भैंस में जैसे कि गलघोटू, खुरपका मुंहपका रोग, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी बुखार, ब्रुसेलोसिस तथा लंपी स्किन, अभी आप पीछे लंपी स्किन आई थी, शरीर में हो गई थी, जैसे रोग, संक्रामक रोग महत्वपूर्ण है और इनका टीका आ चुका है, बाजार में, लंपी स्किन का भी आ चुका है, खुरपका, मुंहपका, और ये लंगड़ी बुखार का तो हम पहले से ही लगा रहे थे। ब्रुसेलोसिस का भी हम जो है उनमें लगाते हैं, 4 से 8 महीने की जो मादा होती है।
3: अच्छा।
4: हाँ, केवल उनमें लगाया जाता है, उसमें नहीं लगाया जाता, नर पशु में नहीं लगाते हैं। इसके साथ ही साथ इन रोगों के कारण दुग्ध उत्पादन घटता है, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है तथा कई बार पशुओं की मृत्यु तक हो सकती है। नियमित टीकाकरण पशुओं को इन रोगों से सुरक्षित रखता है और दुग्ध उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन वाले क्षेत्रों में समय पर टीकाकरण से किसान की आय में स्थिरता आती है। यदि एक दुधारू पशु, अगर मैं ये कहूं कि 4 पशु हैं उनके पास
3: जी,
4: तो यदि एक दुधारू पशु रोगग्रस्त हो जाता है तो केवल चिकित्सा खर्ची नहीं बल्कि दुग्ध की बिक्री भी प्रभावित होती है। साथ के साथ अगर एक बीमार पशु बीमार हुआ है तो ये रोग ऐसे होते हैं कि एक पशु से दूसरे पशु, दूसरे से तीसरे पशु को हो जाता है। तो अगर हमारे एक पशु को हुआ है तो हमारे वाले में जितने भी पशु हैं सबको हो जाएगा।
3: बिल्कुल।
4: और उससे दुग्ध उत्पादन भी घटेगा, बिक्री कम होगी, साथ के साथ जो उसका चिकित्सा पे जो वो है खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। इस प्रकार टीकाकरण अप्रत्यक्ष रूप से किसान की आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन जाता है। अब मैं उन पशुपालकों भाइयों के लिए बात करूंगा जिन्होंने भेड़ बकरी पाल रखी है
3: जी।
4: भेड़ और बकरी छोटे पशुपालकों के लिए आय और पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही साथ देखो कम जगह में गाय भैंस से ज्यादा जगह चाहिए, चारे के लिए ज्यादा जमीन चाहिए
3: जी।
4: भेड़ बकरी के लिए क्या है कि हमारा चराने से भी काम चल जाएगा। कम जमीन चाहिए होगी, कम आवास उसमें जो है क्षेत्रफल में ये जो हम उनको पाल सकते हैं। साथ ही क्या होता है, और हाँ, लेकिन इन पशुओं में कुछ संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं, जैसे PPR है, एंटीरोटॉक्सीमिया है, सीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, खुरपका है, गलघोटू, ये वाली बीमारियां भी, गलघोटू और क्या कहते हैं खुरपका मुंहपका, ये भी दोनों उसमें होती हैं भेड़ बकरियों में। लेकिन हमारे जो पशुपालक हैं उनको इन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। होता है क्या, लोग गाय भैंस में लगवा लेते हैं, छोटे पशुओं पे इतना ध्यान ही नहीं देते हैं
3: जी।
4: इनका भी टीका जो है सरकार की तरफ से फ्री लगाया जाता है इन पशुओं में। साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि गाय भैंस 2 या 4 पाल लगा आदमी, लेकिन जो भेड़ बकरी होती है वो 20, 25, 50 झुंड के रूप में पाल
3: जी जी जी।
4: अगर हमारा एक भी पशु अगर प्रभावित हुआ
3: पूरा
4: झुंड का झुंड प्रभावित होगा। हमें क्या करना है, इनका टीका आ रहा है, ठीक है, पशुपालन की तरफ से हमें समय समय पर टीके लगाए जाते हैं। अगर भाई होता क्या है कि वो गाय भैंस जनरली पूछते हैं लोग कि आपके कितने हैं लगवा लिए, हमारे पशुपालकों को मैं जागरूक करना चाहूंगा कि जब भी टीम आए ये कहें कि साहब हमारे पास भेड़ भी हैं, हमारे पास बकरी भी हैं या हमारे पास सूकर हैं, तो वो खुद बताएंगे कि हाँ इनका भी टीका है या इनका बाद में लगाएंगे तो उनका भी जो है टीका जो है लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं सूकर की बात करूं, जो हमारे पशुपालक भाई सूकर का व्यवसाय करते हैं, सूकर पालन व्यवसाय भी ग्रामीण और व्यावसायिक स्तर पर तेजी से विकसित हो रहा है। पहले एक धारणा थी कि नीचे तबके के ही लोग सूकर पालेंगे, लेकिन आज इस विकसित भारत में अगर मैं बात करूं तो जो बड़े लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो भी जो है उन्होंने सूकर फार्म पाला।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और अगर मैं देखूं, अगर मैं सारा अगर सिनेरियो देखूं, अगर गाय भैंस का, भेड़ बकरी का, तो मैं ये अवश्य कह सकता हूं क्योंकि मैं भी फार्म पे अपनी यूनिवर्सिटी में तीनों इनको देख रहा हूं कि सूकर में सबसे अच्छी ग्रोथ है।
3: अच्छा।
4: हाँ, बीमारियां कम होती हैं और बहुत कम टाइम में अगर आप अच्छी ब्रीड का पालोगे तो 7 से 8 महीने में नर भी और मादा भी प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं।
3: बिल्कुल
4: ठीक है। और बच्चे अगर अच्छी ब्रीड है तो कम से कम 8 से 14 से 15 बच्चे एक बार में देती है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यवसाय करने से पहले आपको मार्केट जरूर देखना है।
3: बिल्कुल,
4: ऐसा
3: बिल्कुल।
4: नहीं है, हम उत्पादन तो कर लेंगे लेकिन हम उनको बेचेंगे कहाँ, तो हमारे पशुपालक भाइयों को उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो बीमारियां होती हैं मैं उनका थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूं। एक तो क्लासिकल स्वाइन फीवर है, जनरली खुरपका मुंहपका है, गलघोटू, सेम खुरपका मुंहपका गलघोटू गाय भैंस भेड़ बकरी सूकर में भी है, और इनका भी टीका लगाया जाता है सरकार पशुपालन विभाग की तरफ से। तो जब भी पशुपालन की टीम आती है बताएं कि साहब हमने ये वाले और पाल रखे हैं, हमने सूकर भी पाल रखे हैं, क्या इसका भी कोई टीका है, तो वो पशुपालन की टीम उसमें भी टीका लगाएगी और जो उनकी मृत्यु दर है वो जनरली कम हो जाएगी।
3: बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, और गाय भैंस भेड़ बकरी में जो होने वाले रोग हैं उनके टीके लगवाए जाते हैं, और आपने बीमारियों की भी जानकारी दी है और टीके उनके लगने चाहिए वो भी आपने जानकारी दी है। और डॉक्टर साहब देखिए, अब हमारे किसान भाई ये सोच रहे हैं कि ये टीके लगते हैं, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि गाय भैंस भेड़ बकरी सूकर इनमें टीके लगते हैं, तो ये कब टीके लगने चाहिए?
4: हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है सुवन जी।
3: जी
4: देखिए, वैसे तो टीम आती ही है लेकिन कुछ टीके लगते हैं बरसात से पहले।
3: अच्छा।
4: ठीक है, जैसे हमारा क्या कहते हैं गलघोटू है
3: जी,
4: गलघोटू का और क्या कहते हैं लंगड़ी बुखार का, इसका लगता है बरसात से पहले।
3: अच्छा।
4: अगर मैं बात करूं खुरपका मुंहपका की, तो ये लगता है जब हमारा जाड़ों का सीजन शुरू होने से पहले
3: जी।
4: अगर मैं बात इधर तो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर, और उधर मार्च अप्रैल
3: जी।
4: फिर ये भी होता है कि हमने अगर एक बार टीका लगवा लिया, देखो ये भी प्रश्न है, तो वो जानवर को कितने दिन तक सुरक्षित रखेगा?
3: बिल्कुल,
4: सबसे बड़ी बात ये है भैया, थोड़ी हमने एक बार टीका लगा लिया तो जानवर जो है जब तक जिएगा वो जो है सुरक्षित रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर खुरपका मुंहपका के मैं टीके की बात करूं तो वो केवल 6 महीने के लिए ही जानवर को सुरक्षित रखेगा।
3: अच्छा,
4: केवल 6 महीने के बाद आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा। अगर मैं गलघोटू की बात करूं और इसकी लंगड़ी बुखार की, तो अगर हमने एक बार लगवा लिया तो जानवर को 1 साल तक के लिए सुरक्षित रखेगा।
3: अच्छा,
4: और देखिए ये और खासियत है, अगर जो मादा है वो अगर प्रेग्नेंट है, जैसे लोग जनरली प्रेग्नेंट में लगवाते नहीं है
3: जी,
4: वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा कि जो लास्ट का जो महीना 3 महीने रहते हैं गाय भैंस के केस में खासकर, कि भाई 9-10 महीने की जो है उनका जो है प्रेगनेंसी पीरियड होता है, तो लास्ट वाले महीने में ना लगवाएं।
3: अच्छा,
4: लेकिन शुरू से लेके 1 से लेके 6 महीने तक लगवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं भेड़ बकरी की बात करूं तो भेड़ बकरी 155 दिन के करीब ब्याती है, तो आप लास्ट वाला महीना छोड़ दीजिए
3: जी जी,
4: जब ब्या जाए उसके बाद लगवाइए। ऐसे अगर मैं सूकर की बात करूं तो सूकर में 115 दिन का पीरियड होता है, तो लास्ट का 1 महीना छोड़ दीजिए आप
3: जी जी जी,
4: और जब उसका बच्चा हो जाए उसको 2 महीने या 3 महीने के बाद, चाहे भेड़ बकरी का हो चाहे सूकर का हो। और इसमें जो है क्या कहते हैं गाय भैंस के अगर मैं बच्चे की बात करूं तो इसमें 4 महीने के बाद जो है टीका लगवाना चाहिए। समय मैंने बता दिया गलघोटू का और क्या कहते हैं लंगड़ी बुखार का, बरसात से पहले लगना ही चाहिए
3: बिल्कुल,
4: और खुरपका मुंहपका का इधर सितंबर अक्टूबर में उधर, क्योंकि वो 6 महीने की दे रहा है केवल।
3: अच्छा,
4: उधर आपका मार्च में और अप्रैल में आप लगवा सकते हैं।

0: क्या है कि टीम आई है, आपने लगवाए नहीं, घर पर कोई नहीं है, भाई टीम बार बार नहीं आएगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि उनके लिए कम से कम 30 से 35 गांव हैं, उनको वो चरण पूरा करना है,
1: जी
0: उसके बाद दूसरी वैक्सीन आ जाएगी, फिर तीसरी वैक्सीन आ जाएगी। अब आप ये सोचें कि आपने आज नहीं लगवाया, टीम दोबारा आके लगवाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो
1: बिल्कुल
0: मेरा पशुपालन भाइयों से ये अनुरोध है कि जब भी टीम जाए, हाँ एक है जो मुझे, मैं बताना चाहूंगा इसमें टीकाकरण में, कि अगर पशु बीमार है उस पशु को टीका नहीं लगवाना है।
1: बिल्कुल,
0: अब बीमार पशु को चाहे कीड़ों की दवाई हो चाहे टीका हो, नहीं लगवाया जाता है। अब मैं कुछ और जो इससे संबंधित है टीकाकरण से, मैं कुछ और मोटी मोटी बातें मैं पशुपालक भाइयों को बता देता हूँ कि अब ये समझना भी आवश्यक है कि टीका कैसे कार्य करता है। जब किसी पशु को टीका लगाया जाता है तो उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता रहित या कमजोर रूप में रोगजनक अथवा उनके घटक उपस्थित होते हैं। होता क्या है, देखिए जनरली हमने टीका लगाया, ठीक है, तो टीका कैसे काम करता है,
1: जी
0: एक बात यह ना कि हमने तो टीका लगा दिया, ठीक है, टीका लगाने के 14 दिन तक एंटीबॉडी बननी शुरू होती है, 14 दिन के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने टीका लगवा लिया और कल को बीमारी नहीं होगी,
1: बीमारी नहीं होगी,
0: 14 दिन के अंदर अंदर बीमारी हो सकती है।
1: अच्छा,
0: हाँ, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने के लिए जो चीज बनती है जानवर के शरीर में, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, तो उसको 14 दिन लगते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, अब ऐसा नहीं है कि साहब हमने तो टीका लगवा लिया था तब भी हमारे यहाँ बीमारी हो गई, वो 14 दिन के अंदर अंदर होगी। वैक्सीन कब बचाएगी, 14 दिन के बाद, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि मैंने कहा था कि समय से वैक्सीनेशन कराएं, दूसरा अगर कोई पशु बीमार है उसमें ना कराएं। हाँ, ये है कि आप जाके बोल सकते हैं वहां पे कि साहब अब मेरा पशु ठीक है, अब वैक्सीन लगा दीजिए, या जो जो बच्चा जो ग्यामन थी जो भी मादा, तो उसको उस समय हमने लास्ट वाले में मना कर दिया कि जब उसका लास्ट चल रहा हो, चाहे भेड़ बकरी हो, सूकर हो या गाय भैंस हो, तो आप नहीं लगवाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, 2-3 महीने बाद आप फिर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर जो है अब जो है पशु तैयार है, अब लगा दीजिए। अब जो उसका बच्चा पैदा हुआ है, गाय भैंस के बच्चे को केवल ये 4 महीने तक ही प्रोटेक्ट करेगी।
1: अच्छा,
0: हाँ, कोई सी भी ये वाली जो भी हमने वैक्सीन बताई है, तो 4 महीने के बाद तो उसको भी जरूरत है।
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है, अगर वैक्सीन होगी आप जाइए जो भी आपके पशु चिकित्सालय है निकटतम, तो वहां पे आप बताइए कि साहब ऐसे ऐसे है और जो है अब मेरे जो जो उसका बच्चा था वो भी रेडी है, उसको वैक्सीन लगवा दीजिए। अब होता क्या है कि टीम चली गई, हम भी बेफिक्र हो गए। अभी पिछली बार देखिए FMD कितनी ज्यादा हुई है, ठीक है,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: और लोगों, जब हम गए, हमारी टीम गई थी यूनिवर्सिटी से, जब हमने वहां जाके देखा तो पता चला कि लोगों ने टीका ही नहीं लगवाया था। तो अब गलती किसकी है, गलती हमारी है। तो उस चीज को थोड़ा सचेत रहना चाहिए, और जब भी कोई भी टीम जाए आप जो है कह के टीका लगवाएं। अगर कोई घर छूट गया है या कभी कभी पशुओं को बाहर ले जाते हैं चराने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए कि सर इतने बजे तक मेरे पशु आ जाएंगे, मेरे पशु में भी लगाना है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा।
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भाई को ये टीके लगवाने हैं और समय से टीके लगवाने हैं, और किसान भाइयों को अपने सभी पशुओं में टीके लगवाने हैं। तो अगर हमारे किसान भाई पशुओं में समय पर टीकाकरण करवाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो पशु हैं वो बीमारियों से बचेंगे, हमें नुकसान नहीं होगा और हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर अरविंद जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी पशुओं में टीकाकरण के बारे में दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सुमेंद्र जी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, समय पर टीकाकरण, स्वस्थ पशुधन, समृद्ध किसान।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: पशुओं में टीकाकरण का महत्व, अभी आपने डॉक्टर अरविंद सिंह से हमारे भैया सुमेंद्र सिंह की बातचीत सुनी, और भैया बातचीत में आपने जाना कि टीकाकरण का कितना बड़ा कार्य हमारे पशुओं के अंदर है, यानी कि कितनी बड़ी महत्ता है, और टीकाकरण हमारे पशुओं को अवश्य लगवाना चाहिए। और भैया ऐसा नहीं कि कुछ किसान भाइयों ने लगवा लिया और कुछ किसान भाई इसमें छूट गए, नहीं तो भाई इससे फिर जो है जो हमारे पीड़ित पशु हैं या इससे प्रभावित जो पशु होते हैं बीमारी से, उससे फिर स्वस्थ पशुओं में ये आ सकता है। और ध्यान रहे कि बीमारी होने से पहले ही ये आप टीकाकरण करा लें। और डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण के बाद 15 दिन के बाद पशु में एंटीबॉडीज विकसित होते हैं, और ऐसा नहीं कि हमने आज या कल टीका लगवाया और 2-3 दिन के अंदर हमारा पशु सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। तो 15 दिन के बाद ही हमारा पशु सुरक्षित माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए और समय पर टीकाकरण अवश्य आप पशु कराएं। और भैया जब इस प्रकार से हमारे किसान भाई अपना काम करते हैं तो उन्हें लाभ होता है, और भैया लाभ एक और चीज़ से होता है जिसका नाम है मनोरंजन। जी हाँ, आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर, क्योंकि भैया शाम का समय है और हमारे किसान भाई कार्यक्रम के अंत में अपना मनोरंजन करते हैं किसी लोकगीत या रागनी से। तो भैया ज्यादा देर न करते हुए आइए सुनवाते हैं भुवनेश गिरी की गाई ये प्यारी सी रागनी।

अभी हमारे किसान भाइयों ने ओगड़नाथ की ये रागनी सुनी और इसमें स्वर दिया था भुवनेश गिरी ने। तो भैया रागनी कैसी लगी आपको और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे पत्रों के माध्यम से। और पत्र लिखने का हमारा पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2 4 6 7 6 3। और भैया जो साथी हमें पत्र नहीं लिखना चाहते तो वो भैया अपने मोबाइल से हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं और हमारे कार्यक्रम की समीक्षा लिखकर भेज सकते हैं, चाहे आप इसकी तारीफ करें या इसमें सुधार के लिए आप लिखें या हमारी आलोचना लिखें या समीक्षा लिखकर भेजें, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। तो भैया हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457072888। देखिए हम नंबर एक बार पुनः बता रहे हैं कि 9457072888। तो भैया इस पर आपने व्हाट्सएप संदेश हमें प्राप्त होंगे।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। विविधा क्रम में लीजिए सुनिए श्रीमती मृदुल रानी की ये वार्ता। विषय है 21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास।
1: लोकतंत्र का विकास प्राचीन एथेंस से आरंभ होकर फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी संविधान के माध्यम से आधुनिक युग तक प्रसारित हुआ, जिसमें सार्वभौमिकता, मताधिकार, मौलिक अधिकारों और बहुदलीय व्यवस्था जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया। लोकतंत्र एक जीवंत प्रक्रिया है जो नागरिकों के साहस, संस्थागत जवाबदेही और वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल ढलने की क्षमता पर निर्भर करता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है तथा शासन जनता की इच्छा से चलता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर उनके माध्यम से शासन में प्रतिभाग करती है। शासन की शक्तियां जनता में निहित होती है। भारत वैश्विक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। आजादी के बाद 17 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव एवं 10 लाख

अधिक स्थानीय चुनाव हो चुके हैं। भारत अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से मौलिक मूल्यों का पोषण करते हुए लोकतंत्र की जननी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। G20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिबद्धता, आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, लोकतांत्रिक लोकाचार, खुला संवाद, मानवाधिकार और समावेशी नीतियों के प्रति रही है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। 21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास जिस गति से हुआ, उसी गति में अनेक अवरोध भी उत्पन्न हुए। दक्षिण एशिया के कई देश, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, इन देशों में चुनाव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आधारित न होकर जातिवाद, पंथवाद, क्षेत्रवाद, विचारधारा जैसे मुद्दों पर आधारित हो गया है। समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, धनी वर्ग लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। 21वीं सदी में लोकतंत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसमें नवीनीकरण और पतन दोनों सम्मिलित हैं। कई देशों में लोकतांत्रिक पतन देखा जा रहा है, जहां निर्वाचित राजनेता लोकतांत्रिक शासन का दिखावा करते हुए संस्थागत ढांचे और नागरिक स्वतंत्रता को कमजोर कर रहे हैं। इसमें न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करना, मीडिया पर अंकुश लगाना तथा सार्वजनिक असहमति को दबाना सम्मिलित हैं। डिजिटल युग में लोकतंत्र का क्षेत्र अधिक जटिल हो गया है। एक तरफ इसने अधिक राजनीतिक भागीदारी को सक्षम बनाया, तो दूसरी तरफ फेक न्यूज ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है। विभिन्न घटनाक्रमों में पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को चुनौती मिली है। 21वीं सदी में लोकतंत्र के विकास की गति तेज हो गई है। एक बार फिर से बहुमत सरकारों का दौर आया है। लोकतंत्र में स्थिर और मजबूत सरकारों का युग है। लोकतंत्र को डिजिटल क्रांति, लोक लुभावन राजनीति और वैश्विक पिछड़ेपन के कारण एक नया रूप मिल रहा है, परंतु इसमें आश्चर्यजनक लचीलापन और नवाचार देखने को मिल रहा है। दक्षिणी एशिया, विशेषतः भारत के संदर्भ में लोकतंत्र के समक्ष संस्थागत एवं सांस्कृतिक चुनौतियां बनी हुई हैं। असफलताओं के बावजूद लोकतांत्रिक लचीलेपन के उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों से नागरिक विरोध तथा भागीदारी से शासन में नवाचार, लोकतांत्रिक आदर्शों को जीवंतता मिल रही है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में स्थानीय लोकतांत्रिक प्रयोग प्रेरणादायी हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा लोकतांत्रिक अनुभव पुनर्परिभाषित हुआ है, जिससे राजनीतिक जानकारी और भागीदारी आसान हो गई है। डिजिटल क्रांति से सहभागिता के नए आयाम मिले हैं। ऑनलाइन याचिकाओं से लेकर हैशटैग कार्यक्रमों तक चुनाव अभियानों एवं नीतिगत चर्चाओं का विस्तार हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक आवाज को बढ़ावा देने वाले साधनों ने इसे कमजोर भी किया है। फेक न्यूज, डिजिटल निगरानी एवं हेट स्पीच के द्वारा ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला है। जैसे भारत और बांग्लादेश में राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं ने असहमति को कमजोर करने और सांप्रदायिक बयानबाजी फैलाने के लिए ट्रोल सेनाओं और गलत सूचना अभियानों का प्रयोग किया गया। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म को हथियार बनाया जाता है, तब इससे जनमत को विकृत एवं असहमति को दबाने के साथ सत्ता पर कब्जा करना आसान हो जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, अराजकता का व्याकरण तब शुरू होता है जब संवैधानिक तरीकों की अनदेखी की जाती है। अभी हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, वह पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। राजनीति एक विकृत व्यवसाय बनती जा रही है। संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई थी कि कहीं भविष्य में लोग राजनीति को व्यवसाय ना बना लें, और आज यही हो रहा है। राजनीतिक पैतृक व्यवसाय बनता जा रहा है। वर्तमान समय में भारत में कई दल छदम राजतंत्र चला रहे हैं। अरस्तु ने भी लोकतंत्र का विकृत रूप भीड़ तंत्र बताया, जो कि वर्तमान समय में सटीक साबित हो रहा है। भारत में जब चुनाव होते हैं, टिकट वितरण का एकमात्र आधार जिताऊ उम्मीदवार होना है। इसके लिए राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों के निष्कासित बाग्य नेता, आपराधिक पृष्ठभूमि के बाहुबलियों एवं नकारात्मक चरित्र वाले लोगों को टिकट देने से नहीं

0: चूकते, क्योंकि किसी भी पार्टी के सत्ता में आने के बाद विधायन कार्य में इन प्रतिनिधियों के विचारों, मत और राय की कोई जरूरत नहीं होती। विधायन कार्य शीर्ष नेतृत्व की इच्छा अनुसार चलता है। दूसरी ओर भारतीय नागरिक पश्चिमी देशों की तरह राष्ट्रहित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाए और चुनाव के समय जाति, धर्म, धन और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए परिणाम को प्रभावित कर देते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नागरिकों की निष्पक्षता और समझदारी लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाने का पैरामीटर है। राजनीतिक दलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नागरिकों का सजग और जिम्मेदार होना आवश्यक है। 21वीं सदी में लोक लुभावन नेताओं का उदय हुआ है, जो भ्रष्ट कुलीन वर्ग और संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने का खोखला दावा करते हैं। श्रीलंका और नेपाल जैसे देश इसके उदाहरण हैं, जिनमें जातीय राष्ट्रवादी एजेंडे से लेकर संसदीय तंत्र को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष शासन की मांग सम्मिलित रही। हालांकि ऐसे नेता शुरू में जनसमर्थन जुटा लेते हैं, परंतु ये नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करने एवं कार्यकारी शक्ति को केंद्रित करने के साथ न्यायिक स्वतंत्रता को भी कमजोर करते हैं। लोकतंत्र की गुणवत्ता में गिरावट चिंता का विषय है। विश्व के कई देशों में न्यायिक स्वतंत्रता, मीडिया की आवाज और नागरिक स्वतंत्रता का ह्रास हो रहा है। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, यहाँ भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिला है। फ्रीडम हाउस ने 2011 में बढ़ अधिनायकवाद, इंटरनेट शटडाउन और असहमति के दमन का हवाला देते हुए भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन से बहुसंख्यक राजनीति और मानवाधिकारों के संबंध में वैश्विक चिंताओं में वृद्धि हुई है। इन नीतियों के खिलाफ विरोध में आंदोलनों की प्रतिक्रिया में गिरफ्तारियों के साथ इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई। बांग्लादेश में भी लोकतांत्रिक साख पर सवाल किए गए। पाकिस्तान में लोकतंत्र संकटीय अवस्था में है। नागरिक सरकारें शक्तिशाली सैन्य संस्थाओं के नियंत्रण में कार्य करती हैं। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी लोकतंत्र अभी भी निरंतर विकास की स्थिति में है। पूरे दक्षिण एशिया में नागरिक और समुदाय आधारभूत स्तर पर सक्रियता, न्यायिक हस्तक्षेप एवं संस्थागत सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं को महत्व दे रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका ने आलोचनाओं के चलते हुए भी कई बार सुरक्षा कवच की भूमिका अदा की। नागरिकों के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण एवं चुनावी अखंडता के मामलों में हस्तक्षेप किया। नागरिक समाज ने, संगठनों ने लैंगिक न्याय से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक मुद्दों पर लामबंद होकर सत्ता को जवाबदेह बनाने के क्रम में पारंपरिक एवं डिजिटल दोनों ही प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया। लोकतंत्र एक जीवंत एवं संघर्षपूर्ण निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए नागरिकों की रचनात्मकता और उनके साहस की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।
1: 21वीं सदी में लोकतंत्र का विकास विविधा क्रम में, अभी आप इस विषय पर श्रीमती मृदुल रानी की ये वार्ता सुन रहे थे।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। प्रस्तुत हैं छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म से। गीतकार गुलजार और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इज्जत फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में आंसू बन गए फूल फिल्म से। गीतकार गोविंद मोनीस और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आंसू बन गए फूल। इस फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही छायागीत अब समाप्त तो होते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग कल रात्रि 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान की संगीत में प्रस्तुति आप सुनेंगे कल सवेरे 6:30 पर। कल सवेरे 6:45 पर काव्य धारा क्रम में श्रीमती दीपिका माहेश्वरी का काव्य पाठ सुनवाया जाएगा। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम आप सुनिएगा कल सवेरे 7:31 पर। कल सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स गीत तुम्हारे। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल सवेरे 10 बजे। धरती गाती है कार्यक्रम में कल सवेरे 9:25 पर सत्यवीरा हांडा के गाए रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा कल दिन में 11:30 पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:05 पर। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मिडडे मेलोडी। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर परिचर्चा का विषय रहेगा नारी शिक्षा और सशक्तिकरण, बदलते भारत की नई तस्वीर। इसमें प्रतिभाग करेंगी डॉक्टर अंजू बंसल और डॉक्टर शारदा द्विवेदी। इस परिचर्चा का संचालन करेंगी भावना अरोड़ा। लोकधारा कार्यक्रम में कल दोपहर 1:45 पर विविध कलाकारों के द्वारा गाए हरियाणवी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में कल शाम 6:05 पर बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मेरठ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला सुनवाया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30

0: सतर्क रहिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख

0: नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को SIT में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा पर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि एक बार प्रस्तावित कानून बन जाने और टास्क फोर्स के पूरी क्षमता से काम शुरू कर देने के बाद देश में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छी कमेटी बनी है, आप सब लोगों ने भी नाम देखा होगा। नंदन जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनाया है, श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने अपने अपने क्षेत्र के महारथियों को उसमें शामिल किया है और मैं समझता हूं कि ये महत्वपूर्ण विधेयक जब कानून का सकल अख्तियार करेगा और ये टास्क फोर्स अपने जब पूरी तरीके से अस्तित्व में आकर अपने काम को आगे बढ़ाएगा तो पेपर लीक जैसे मामले देश में दोबारा हमको लगता है कि अब सुनाई नहीं दे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया

0: के लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस अधिकारी एस किरण की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में एक पुलिस उप महानिरीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के पीठ के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय की पीठ मामले के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच और मंदिर ट्रस्ट के वित्त का लेखा परीक्षा करने की मांग वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी। उधर इस मामले में अयोध्या में आज एंटी करप्शन कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है। इसको लेकर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देश के नागरिकों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो गर्व के साथ अपने घरों पर तिरंगा फहराए।
1: हम प्रधानमंत्री जी ने लगातार तिरंगा का अभियान चलवाकर पूरे देशवासियों को राष्ट्रभक्ति के प्रति खासतौर से हर नागरिक का को कर्तव्य बोध कराया है और ये निश्चित रूप से अपने झंडे के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए और सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फ्लैग के प्रति पूरा समर्पण भाव से सम्मान करें और आदर पूर्वक इसको अपने घर में स्थापित करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 जुलाई को वाराणसी से देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास सामाजिक समरसता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ये अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलाया जाएगा। वाराणसी में इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य ने बताया कि अभियान 5 चरणों में संचालित होगा। इसका उद्देश्य गुरु रविदास के समरसता, कर्मयोग, भक्ति और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
2: संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे देश में संत रविदास जी के विचारों को उनके आदर्शों को ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम है 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूज्य निरंजन दास जी के कर कमलों से 131 कलशों को पूरे देश में भेजा जाएगा। इन कलशों का कई जगह पर जिला मुख्यालय पर पूजन और सम्मान होगा।
0: राजधानी लखनऊ, श्रावस्ती, अमरोहा और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा खतरे के निशान के पास बह रही है। वहीं नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने

0: बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश, परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और सशक्त बनाएगा ये कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स के गठन का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में प्रदेश सरकार को एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश। 2 हफ्ते में मांगी जांच की पहली स्टेटस रिपोर्ट। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने कल अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:31 हुए हैं। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए अनीता शर्मा के गाए भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अनीता शर्मा के गाए भजन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव।

0: नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। चार बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। अर्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 401.6
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत संध्या। गीत संध्या कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है जीवनधारा। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है येसुदास और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में साजन बिना सुहागन फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

दिल अपना और प्रीत पर आई। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर का सुना। गीतकार शैलेंद्र और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 होने को है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पराया धन फिल्म से कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले की आवाज में।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पराया धन फिल्म से कुछ गीत। गायक कलाकार थे आशा भोसले, किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक

0: शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा, टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और तराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
3: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को

0: और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048123717117, 2371710716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे @yarnewsalerts पर भी #askyar के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो समय आप

0: केस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई है
1: जी।
0: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीजेज हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है
1: जी।
0: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता, और जो एक नाम लिया गया कालाजार वो भी जो है वो ज़रूरी है लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका
1: जी।
0: सेंट फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया वो उससे जो है वो होता है, और ख़ास करके बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं
1: जैसे डेंगू के,
0: जैसे डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं वाइट ब्लैक इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
1: जी।
0: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
1: जो रात के
0: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
1: अर्ली मॉर्निंग
0: का, और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
1: शिफ्ट में आते हैं
0: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको मानव के खून की या पशु के खून की, जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी का खून चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा, जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं, तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले मच्छर डेंगू करेंगे और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल बिस्लरी की बॉटल है या कप है
1: उसमें
0: पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग,
1: तो
0: और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं आई बॉल उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में?
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष?
2: जी, ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका।

0: मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोरों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
0: में। ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी।
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है। पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है।
3: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है, तो ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
3: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो रखा रहता है, लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
1: तो
3: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
0: कम। मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा। इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा संक्रमण का?
0: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पर डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है, किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, या जांच अलग अलग होता है तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफी कोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
3: अभी एक योगेश जी का एक प्रश्न और था कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत,
3: कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं, रगड़ना जरूरी है।
3: उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक

0: दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कोई बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पैरासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ अब, ये है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
4: नमस्ते।
1: नमस्ते
4: नमस्ते जी। नमस्ते
1: जी। जी आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
4: जी मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
3: शुरू में हम लोगों ने
1: हम अभी तक यही चर्चा कर रहे हैं, तो फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय है फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग को इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में 4-5 महीना।
3: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीजें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें, वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है। और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरी बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो है वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीट कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है, और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
0: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 days.
0: तो लगभग ये 7 days का उसका एडल्ट निकलने का टाइम, और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को

0: काटेगा तब जो है वो, तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले डीडीटी का होता था, आजकल डीडीटी क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है, तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
2: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर का?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है।
1: डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
0: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, तो काटता है, तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा, तो इसलिए यह 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं राकेश शिमला से।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
4: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है अगर आप बच्चों को काटता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, उस समय
0: में
4: क्या करना चाहिए ताकि
0: बच्चों
4: को अगर मच्छर से बचाना हो?
0: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे, और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियां खुली नहीं होनी चाहिए, और खास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है,
1: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
0: बिल्कुल।
1: पीयूष जी ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या हैं? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
3: देखिए डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रहता, किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज्यादा पैनिकी होता है,
1: रोज की संख्या देखी जाती है,
3: रोज उसकी संख्या देखी जाती है, तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज्यादा जरूरी रहता है और इस दौरान हाइड्रेशन को अप्रोप्रिएट होना यह ज्यादा जरूरी रहता है, और इस दौरान अगर ब्लड की जाँच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ट सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रीट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले

0: जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है, जैसे कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जाकर के करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप और ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
0: बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते का
1: पत्ते
0: या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूंगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस

0: हमारे एक और श्रोता विजय
1: जी। कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: विशेषज्ञ को नमस्कार।
2: नमस्ते।
1: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवर, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
0: जी।
1: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
2: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है जी।
0: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
2: तब हो,
0: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
3: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
0: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं।
3: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो, कि जब मासेस में यूज होगी
0: जी,
3: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
0: जी,
3: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे, तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में, तब उसका
0: यूजली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में
2: जी। इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें, यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
0: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले की आवाज में हमसाया फिल्म से। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और कीर्ति कुमार की युगल आवाजों में राधा का संगम फिल्म से। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दो बदन फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है रवि ने।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की युगल आवाजों में वो सात दिन फिल्म से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है आशा भोसले की आवाज़ में चटपटी फिल्म से। गीतकार योगेश और संगीत दिया है बाबू मनोहारी ने।

चटपटी फिल्म में आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने।

गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक ने। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से गीत सुनना चाहते हैं सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चनाताई गोंडा ने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने। मोहल्ला हलवाईयान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदरानी और हिना कौसर ने। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके सभी परिवार वालों ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है बाजीगर।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश की है ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, शायना महवश, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर ने। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़ और प्रणीता गायकवाड़ ने। जमशेदपुर झारखंड से गीत सुनना चाहते हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन ने। आकोट से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और संजीव डावेराव ने। चौटाला हरियाणा से गीत सुनना चाहा है दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और इनके सभी साथियों ने। अनारकली बाजार जगराव से गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके सभी साथियों ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में, चमत्कार फिल्म से।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा ने एकता कॉलोनी रोहतक से। जनकपुरी सहारनपुर से गीत सुनना चाहते हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और वेलिस डिकैस्ट्रो। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और इनके सभी साथियों ने। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित्त आहूजा ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में रंग फिल्म से।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनने की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम बकानी खुर्द आंवली कला भवानी मंडी से, झालावाड़ राजस्थान से, राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य और समस्त साथियों ने। जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा, महबूब मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद बारिक अंसारी और बेटी अलशिफा अंसारी ने। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से गीत सुनना चाहते हैं। भाई भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई मंसूरी, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली मंसूरी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से गीत सुनने की फरमाइश मिली है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी से। प्रदीप ताम्रकार, राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, पारस ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार गीत सुनना चाहते हैं पतेया तहसील पतेरा जिला दमोह मध्य प्रदेश से। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से गीत सुनना चाहते हैं मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अंतिम गीत, चालबाज फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की युगल आवाजों में।

0: चालबाज फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के गायज गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIR filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
4: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted. This clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Mitra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Daga of Skyroot Aerospace in a social media post. Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member special investigation team SIT headed by Inspector General of Police IG for the Lucknow range, Kiran S, to probe the alleged embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the temple trust finances. Union Minister for Development of Northeastern Region Jyotiraditya Sindhya today chaired the Ministry of Development of Northeastern Region Parliamentary Consultative Committee meeting in New Delhi to review the progress of flagship unique selling proposition USP initiative. Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver medal in women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championship bronze winner Gyaneshwari lifted 88kg in the snatch section and 111kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. Onome Omolola Didi of Nigeria won the gold with the Commonwealth and Games record total lift of 206kg. Another Indian weightlifter, Vindhya Rani Devi, won the bronze medal in the women's 58kg category competition. Vindhya Rani lifted 87kg in the snatch section and 112 in the clean jerk for a total lift of 199kg. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी पहली सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।